सुप्रभात, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 13, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने वाले हैं। अब शुरू होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार बुलेटिन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15 प्रतिशत

0: प्रतिशत पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात 440 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Ashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. It focuses on multiple strategic components designed to ensure comprehensive and sustainable connectivity. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to the Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. As part of the exercise, over 13,000 booth-level officers will visit every household till 29th of this month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all the existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Claims and objections can be filed from 5th of August to 4th of September. The final electoral roll will be published on 7th of October. Electors can fill the enumeration form online at www.voters.eci.gov.in.

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आज सुनिए वार्ता कुंदरू की खेती।

जोहार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका साथी अनिमेश और आप सुन रहे हैं खेती की बातें। आज का जो विषय है वो एक ऐसी सब्जी के बारे में है जो 10 महीने तक कमाई देती है और बाजार में मांग भी खूब रहती है। जी हां, आज बात करेंगे कुंदरू की खेती के बारे में। मित्रों, कुंदरू जिसे आईवी गार्ड या टिंडोरा भी कहते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद की जाने वाली सब्जी है। खास बात यह है कि एक बार इसे अगर लगा दिया जाए तो 3 साल तक बार बार तोड़ सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं इसकी खेती। सबसे पहले जलवायु और मिट्टी की बात कर लेते हैं। कुंदरू गर्मी पसंद करता है, 25 से 35 डिग्री तापमान इसके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। झारखंड, बिहार और पटना, रांची के आसपास ये खूब पसंद किया जाता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मित्रों, बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। पीएच का जो मान है वो 6 से 7 के बीच का होना चाहिए। अगर 6 से 7 के बीच अगर आपके मिट्टी के पीएच का मान है तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। खेत तैयार करते समय 2 से 3 बार जुताई करके 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ डाल देनी चाहिए। अब बातें कर लेते हैं बुआई पर। कुंदरू बीज से नहीं तने की कलम से लगता है, क्योंकि बीज से कड़वा निकलता है। इसके 3 चरण होते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला चरण है 6 महीने पुरानी स्वस्थ बेल से 15 से 20 सेंटीमीटर की कलम काटनी चाहिए। हर कलम में 3 से 4 गांठ होनी चाहिए। दूसरा चरण है खेत में 2 मीटर × 2 मीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर के गहरे गड्ढे बनाएं। तीसरा चरण है हर गड्ढे में 1 कलम तिरछी करके लगा दें, 2 गांठ मिट्टी के अंदर और 1 से 2 बाहर। इसका समय क्या होता है? तो इसका बोने का जो समय है वो है फरवरी से मार्च, जून से जुलाई, सितंबर से अक्टूबर। किसान भाई बहनों, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि मचान जो है इस फसल के

जरूर बनाए, क्योंकि कुंदरू बेल वाली फसल है। बांस या लोहे के एंगल से 6 फीट ऊंचा मचान बनाए। मचान पर बेल फैलेगी तो फल ज्यादा लगेंगे और तोड़ने में भी आसानी होगी। जमीन पर फल सड़ जाते हैं। खाद और सिंचाई क्या होनी चाहिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। खाद और सिंचाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है इस फसल के लिए। बुआई के 1 महीने बाद 25 किलो यूरिया, 50 किलो एसएसपी प्रति एकड़ डालें। हर तुड़ाई के बाद हल्का यूरिया छिड़क दें। सिंचाई गर्मी में 7 दिन पर, सर्दी में 15 दिन पर करनी चाहिए। याद रखें, पानी भरेगा तो जड़ सड़ जाएगी। कीट और रोग से कैसे बचे, अब इसके बारे में बात करते हैं। कुंदरू में सबसे ज्यादा फल मक्खी लगती है। बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप 8 से 10 प्रति एकड़ लगाया जाना चाहिए। नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करनी चाहिए। छाछ रोग अगर लग रही है तो मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़क देना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात कि इसकी कमाई क्या होती है। भाइयों, बुआई के 3 महीने बाद आप तुड़ाई शुरू कर सकते हैं। हर 8 से 10 दिन पर फल तोड़ सकते हैं। 1 एकड़ से हर तुड़ाई में 4 से 5 क्विंटल कुंदरू निकलता है। लागत क्या होगा, सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए पहले साल में लगाएं। दूसरे तीसरे साल में तो सिर्फ तुड़ाई और खाद का खर्च ही आता है। तो किसान भाई बहनों, कम जगह, कम पानी, कम लागत में अगर अच्छी कमाई चाहते हैं तो कुंदरू की खेती जरूर अपनाएं। कोई सवाल हो तो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कुंदरू की खेती, इसी विषय पर आप चर्चा सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। अब इस कार्यक्रम की प्रस्तुति से अनिमेश को दीजिए अनुमति और आप सभी रखें अपना पूरा पूरा ख्याल। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

कुंदरू की खेती, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे वार्ता दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें में। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन। जरा उठकर अंगड़ाई लीजिए, अपने भीतर की शक्ति से रूबरू हो, ताकि आपकी सोई हुई प्रतिभा, दिव्य शक्ति जो अब तक व्यर्थ पड़ी है, जाग उठे। अपने महान व्यक्तित्व को जगाने का एक बार प्रयत्न तो करें। खुशी और सुख हमें उपहार के रूप में नहीं मिलते, उनके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। ये था आज का चिंतन।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं देश वंदना।

मिलीजुली आवाजों में आप सुन रहे थे देश वंदना। अब आइए सुनते हैं भजन। कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये भजन। और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और साथियों की आवाजों में ये भजन।

अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और सुरेश वाडकर की आवाजों में आप सुन रहे थे भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस। कलाकार हैं रविंद्र साठे और अनुराधा पारगांवकर। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, इस समय आप है आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। सुबह के 7:05 हुए हैं।
1: जहां लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहां की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है, जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति, रविवार 5 जुलाई 2026 को 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 से आप सुनिएगा, जरा सुनिए ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा मिथिलेश श्रीवास्तव की भेंट वार्ता, सर्पदंश के प्रति जागरूकता जरूरी है, अंधविश्वास से बचें। इनसे बातचीत करेंगे विवेक आदित्य। 7:20 का समय होगा लोकगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा अंगिका में लोकगीत। कलाकार होंगे हरिवंश प्रसाद और साथी। बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि सुनेगा 7:35 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा आधुनिक बांग्ला गान। कलाकार होंगे बाबुल सुप्रियो, जोजो और श्री राधा। दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुनेगा 7:50 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा डॉक्टर निशा चौधरी की भेंट वार्ता, टीकाकरण जरूरी क्यों, इनसे बातचीत करेंगे राजेश कुमार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले सुबह 8:00 से सुनेगा समाचार प्रभात। 8:15 का समय होगा मॉर्निंग न्यूज का। 8:30 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले हिंदी में समाचार सुनेगा सुबह 9:00 से। 9:05 का समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना का। 9:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन, राग होगा अलहया बिलावल।

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 10 बजे से सुनने का हिंदी में समाचार। 10:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 10:10 का समय होगा विश्व दर्पण का। फिल्म संगीत सुनने का 10:20 से आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 11 बजे से सुनने का हिंदी में समाचार। 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 12 बजे से सुनने का हिंदी में समाचार। 12:05 का समय होगा फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत का। महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम आंगना सुनने का 12:30 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 1 बजे से सुनने का हिंदी में समाचार। 1:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 1:10 से सुनेगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। 1:20 का समय होगा फिल्म संगीत का।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम जरा सुनिए। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मिथिलेश श्रीवास्तव की भेंट वार्ता। सर्प दंश के प्रति जागरूकता जरूरी है, अंधविश्वास से बचें। इनसे बातचीत कर रहे हैं विवेक आदित्य।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए।
3: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके समक्ष आए हैं एक जन जागरूकता भरे विषय के साथ। श्रोताओं, आजकल एक खबर आपको आसपास सुनाई जरूर पड़ती होगी। आजकल अखबारों से इस बात की जानकारी आपको जरूर मिलती होगी कि किसी की मृत्यु सर्प दंश से हो गई या फिर किसी को किसी सांप ने काट लिया। और श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम का यही विषय है। और आज के कार्यक्रम में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बरसात के शुरुआत से ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन समय पर उचित डॉक्टरी सलाह नहीं लेने के कारण और अंधविश्वास के तरीके अपनाने के कारण हमारे शहर और आसपास के समाज से ही किसी की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्या सावधानियां अपनाकर हम सर्पदंश जैसी घटनाओं से बच सकते हैं, या फिर दुर्घटनावश अगर किसी को किसी सांप ने काट लिया तो उसे त्वरित कार्रवाई के रूप में क्या करना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके? और यह बात खुद जागरूक होते हुए अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने वाली बात है श्रोताओं। और आज के कार्यक्रम में इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक खास मेहमान को, जो जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्नेक कैचर का काम करते हैं। स्नेक कैचर, जिन्हें सर्प मित्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको अपने घर के आसपास कोई सांप देखने को मिले या अपने पड़ोस में किसी के यहाँ सांप निकलने की जानकारी मिले तो किसी सर्प मित्र से जरूर संपर्क करें। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने आज के मेहमान का। और सबसे पहले उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार महोदय, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
4: नमस्कार सर, मैं जमशेदपुर निवासी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ छोटू स्नेक बॉय बोल रहा हूँ।
3: जी हाँ। अच्छा छोटू जी, आप भी अभी सुन रहे होंगे कि बारिश का मौसम शुरू होते ही कहीं कहीं सांप के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं और सही जानकारी के अभाव में लोगों की जान तक चली जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए, अभी बरसात के मौसम है और बरसात के मौसम में अधिकतर सांप निकलते हैं। बस मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि आपके घर में थोड़ा कचरा हो तो उसको सफाई रखें और जूता चप्पल भी पहन रहे तो उसको भी चेक करके पहने, क्योंकि अभी बरसात के मौसम में बरसात हो रही है कि जो गड्ढे में सांप रहते हैं उसमें पानी भर जाता है तो सांप इधर उधर घर में घुस जाता है। और बहुत से ऐसे हैं कि जो सांप का बाइट से हॉस्पिटल में उपचार नहीं मिल रहा। मैं सरकार से ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा पूरा झारखंड में हर सरकारी हॉस्पिटल में एंटीवेनम का व्यवस्था करे, ताकि गरीब जनता आम पब्लिक एंटीवेनम के चक्कर में बहुत सांप का बाइट से डेथ हो जाता है।
3: और छोटू जी, अगर बात की जाए तो हमारे जमशेदपुर शहर के आसपास किन प्रकार के सांपों की प्रजाति पाई जाती है जो कि विषैले होते हैं? क्या सभी सांप विषैले होते हैं?
4: नहीं, सभी सांप विषैले नहीं होते हैं। हमारा जमशेदपुर में मात्र 3 से 4 ही जहरीले सांप होते हैं। जैसे कि हम सब नाग जिसे बोलते हैं उसे कोबरा भी बोला जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में उसे हॉरिस सांप बोला जाता है, और एक होता है कॉमन करेट, ग्रामीण क्षेत्र में उसे चीती सांप बोला जाता है, जो रात के वक्त सोए हुए आदमी के बिस्तर में घुस के उसे बाइट करता है। पता नहीं चलता है कि सांप बाइट किया है, लगता है चीटी या मच्छर काटा है। उससे क्या है कि इंसान चीटी या मच्छर समझ के हाथ से मसल के फिर लेट जाते हैं, तो लेट जाते हैं तो वही सबसे बड़ा गलती करके वो हमेशा के लिए लेट जाते हैं। और एक तीसरा सांप है जो बैंडेड कैरेट बोलते हैं, वो नदी तालाब के आसपास रहते हैं, वो भी रात के ही वक्त निकलते हैं। यही हमारा जमशेदपुर में 3 ऐसे प्रजाति सांप है जो जहरीले हैं। बाकी ढोंड सांप, धामिन सांप, कैट स्नेक, चूचे कटकिलवा के सब जो सांप है सब जहर नहीं होता है, बस इंसान डर से हदस से ज्यादा मरते हैं। और मैं एक और बात बोलता हूँ कि कभी भी सांप बाइट होता है तो ओझा गुनी के चक्कर में एकदम ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाए तो ही आपका सही उपचार इलाज मिलेगा।
5: हाँ बिल्कुल सही बात है छोटू जी, क्योंकि आजकल ये भी सुनने में आता है कि सांप के काटने के बाद लोग ओझा गुनी के चक्कर में उसके प्रभाव में आकर के अपनी जान तक गंवा देते हैं, और ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा पाई जाती हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए ये जो आप बात बोल रहे हैं ये तो एकदम सच बात बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ऐसा ओझा गुनी के चक्कर में आदमी पड़ते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में आदमी ओझा गुनी के चक्कर में पड़ते हैं। उन लोग गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है इलाज करने के लिए, उन लोग भी सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे तो 2-4 लाख खर्चा होगा, हम कहां से इतना पैसा लाइन अप करके एडजस्ट करेंगे। ओझा गुनी का जो चक्कर है होता ये है कि बहुत पिछले जमाने का आदमी लोग बोलता है कि ये ओझा झाड़ दिया तो मरीज ठीक हो गया, तो ये चीज गौर आदमी कोई नहीं करता है कि बगैर जहरीला सांप काटता है तो ओझा झाड़ता है तो वो इंसान बच जाता है, यही जहरीला सांप काटेगा। ओझा के पास जाएंगे तो बोलेगा कि आप लोग लेट में लाए हैं तो कोशिश कर रहे बचाने के लिए, तो नहीं बच पाता इंसान। और नॉर्मल सांप जो विषैले नहीं होते हैं वो जब बाइट करते हैं तो ओझा बचा देता है, तो गांव में पूरा हल्ला होता है कि अरे वो ओझा तो बचा दिया है। ऐसा कुछ सांप का बाइट होता है तो ओझा के पास ले जाना तो ओझा बचा देगा, तो ये इंसान बहुत कम जान रहा है कि जहरीला सांप को नहीं बचा पाएगा काटा हुआ, नॉर्मली सांप का काटा हुआ को ही बचा पाएगा क्योंकि उसमें जहर नहीं होता।
5: अच्छा छोटू, जैसा कि आपने बताया कि हमारे जमशेदपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में 3 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिन्हें या तो नाग या खोरी सांप आपने कहा, या बैंडेड कैरेट, या फिर चित्ती की जो आपने बात की, अगर कोई इंसान देखे तो इन सांपों की क्या पहचान होती है जो देख करके समझ जाए कि ये जहरीले सांप है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए?
4: देखिए इसकी पहचान है जिसे हम सब नाग खोरिस बोलते हैं, ये फन मारता है तो पीछे में यू आकार होता है जिसे खोरिस ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है। जो चीती सांप है जो हम लोग इंडियन कॉमन करेत बोलते हैं वो पूरा ब्लैक रहेगा, काला के ऊपर चूड़ी जैसा गोल गोल व्हाइट दाग रहेगा, पूरा ब्लैक में व्हाइट चूड़ी बने रहेगा। ये लंबाई इसका 3-4 फीट होता है। अच्छा। ये रात के ही वक्त निकलता है और दीवार के एकदम किनारे किनारे चलता है। और जो तीसरा है बैंडेड करेत, उसका बॉडी में जैसे उंगली में डब्बा डब्बा 3 डब्बा होता है ना, वैसे उसका शरीर में पीला काला टाइप का रहेगा, उसी को बैंडेड करेत, राणा सांप, बांसफाड़ सांप बोलता है। और उसमें बहुत ग्रामीण क्षेत्र में गलत अफवाह है कि उसका पुच्छी में डंक होता है जो कि इंसान को मार दे डंक से तो शरीर फट जाएगा, जमीन में मार दे तो जमीन फट जाएगा, ये सब गलत बात है। ये सब जो भी स्नेक है जहरीला ये सबका मुंह में पॉइजन होता है और वो जल्दी काटने नहीं खोजेगा, आपका जब पैर पड़ेगा आप उससे छेड़छाड़ कीजिएगा तो ही वो बाइट करेगा। बस हम आम पब्लिक से यही गुजारिश करते हैं कि यदि आपको स्नेक के बारे में सांपों के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे छेड़छाड़ ना करें। और दूसरी बात है कि सांप को मारे नहीं, अगल बगल में आपका कोई फॉरेस्ट का आदमी हो चाहे स्नेक सेवर हो भले उससे कांटेक्ट करके उसे रेस्क्यू करा के सुरक्षित उसे फॉरेस्ट में रिलीज करवा दे।
5: और जैसे कि छोटू जी अगर किसी के घर में कोई सांप निकल गया है चाहे वो जहरीला हो या फिर जहरीला नहीं भी हो, वो तो हड़बड़ी में या फिर घटना के सिचुएशन में लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इस तरह लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए या फिर सांपों को अपने घर से दूर रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए?
4: देखिए एक मार्केट में मेडिकल में मिलता है कार्बोलिक एसिड, लेकिन उसके बारे में हल्ला है कि सांप जहां आता है कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करने से सांप नहीं

0: आता है, लेकिन ये जो कार्बोलिक एसिड है ये एक तेजाब एसिड है, ये इंसान का शरीर में भी टच होगा तो पूरा जला देगा, और सांप के ऊपर भी पड़ेगा तो उसको भी जला के तड़पा के मरा देगा। उससे आपको सिंपल उपाय हम बता रहे हैं, कभी भी घर में सांप घुसता है, अगल बगल सांप आपको दिखता है, वो घर में ना घुसे। उसके लिए सिंपल उपाय है मिट्टी तेल, अभी बहुत कम मिल रहा है, जिसे हम सब किरोसिन तेल बोलते हैं, जमशेदपुर में दो ही तीन जगह मिलता है, एक सांची मंदिर लाइन के सामने। आप हाफ लीटर मिट्टी तेल ले लीजिए, और क्रॉस फिनाइल मैंने ब्लैक काला वाला वो हाफ लीटर ले लीजिए, और 3 से 4 लीटर पानी लीजिए। ये तीनों को एक घोल बना के डब्बा में मिक्स कर दीजिए, और सप्ताह 10 दिन में वही 1 लीटर पानी निकालिए, घर के चारों तरफ छिड़काव कीजिए। घर में अभी पोचा मरा आ रहा है तो वही पानी यूज कीजिए ना, घर में सांप कीड़ा मकोड़ा मच्छर कुछ नहीं आएगा, जो भी रहेगा वो तुरंत निकल के भाग जाएगा।
1: तो इससे कोई आम इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा?
0: नहीं, इसमें कोई नुकसान की कोई बात नहीं।
1: बहुत ही अच्छी सलाह दी आपने, क्योंकि ये तो पर्यावरण हितैषी भी है, और जो लोगों को सांपों के प्रति जो मन में भय या डर होता है उससे भी लोगों को डर मुक्त करेगा। अभी आप सुन रहे थे जमशेदपुर के ही सर्प मित्र मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ छोटू जी से हुई बातचीत। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और आप सभी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक मुझे यानी विवेक आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए।
3: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
2: जरा सुनिए,
4: सर्प दंश के प्रति जागरूकता जरूरी है, अंधविश्वास से बचें। इसी विषय पर आप सुन रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव की भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे विवेक आदित्य। इसी के साथ कार्यक्रम जरा सुनिए अब संपन्न होता है।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। लोकगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हरिवंश प्रसाद की आवाज में अंगिका में गीत।

जनवा सोहावन लागला।

0: परिवार वातो सुख के या धरवा
1: परिवार वातो सुख के या धरवा।

आगे बढ़ा आगे बढ़ा मजदूर किसानवा को हमन लागेला।

चूड़ा रे रे रे रे हरे ने हुआ अरे के हु

0: सुंदरी पहिनी गेली भागलपुर बजरिया,
1: सुंदरी पहिनी गेली भागलपुर बजरिया, अरे भागलपुर।

हरिवंश प्रसाद और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे अंगिका में गीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आधुनिक बांग्ला गान। कलाकार हैं बाबुल सुप्रियो।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आधुनिक बांग्ला गान। अब आइए सुनते हैं बाबुल सुप्रियो और जोजो की आवाजों में आधुनिक गान।

बाबुल सुप्रियो और श्री राधा की आवाजों में आप सुन रहे थे आधुनिक बांग्ला गान। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर निशा चौधरी की भेंट वार्ता, टीकाकरण जरूरी क्यों, इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि टीकाकरण किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन टीकाकरण वास्तव में कितना जरूरी है, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा चौधरी। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहिबा, टीकाकरण क्यों जरूरी हो जाता है?
1: टीकाकरण क्यों जरूरी है, ये जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये टीकाकरण है क्या। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय ही हमें जन्म के समय टीका लगा दिया जाता है
0: जी।
1: और फिर हमें एक लंबी सी लिस्ट दे दी जाती है,
0: इस समय अंतराल में सब सब टीका लगाना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। टीकाकरण जो है, आप अगर कभी भी उस लिस्ट को उठा के देखेंगे तो उसमें अलग अलग बीमारियों का नाम लिखा रहता है, जैसे कि डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, उसके अलावा आपका हिप इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल जिसको निमोनिया का वैक्सीन कहा जाता है, रोटा वायरस जो डायरिया का वैक्सीन होता है। तो बेसिकली ये जितने भी वैक्सीन होते हैं वो उन सारी बीमारियों से बचाने का एक उपाय है। जैसे कि अगर हम किसी भी एक टीके को किसी के शरीर में देते हैं इंजेक्शन के द्वारा या फिर मुंह में खिलाने के द्वारा, तो वो जो शरीर है उस बीमारी के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। और अगर वो बीमारी होती भी है तो वो इतनी माइल्ड फॉर्म में होगी, मतलब इतने हल्के फॉर्म में होगी, जिसके वजह से उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस जो है, एक होता है बीमारी से सर्दी खांसी बुखार हो गया,
0: नॉर्मल,
1: एक हो गया निमोनिया पकड़ लिया या फिर सांस की तकलीफ या उससे भी ज्यादा खराब, उन सबसे वो स्पेशली वो टीके पचाते हैं।
0: तो प्रारंभिक तौर पर कौन सा टीका ऐसा होता है जो बहुत जरूरी हो जाता है?
1: जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर में बीसीजी का टीका
0: जी,
1: पोलियो का ड्रॉप और हेपेटाइटिस बी। जितने भी बच्चे जो हॉस्पिटल में डिलीवर्ड होते हैं उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले ही ये टीके लग जाने चाहिए। उसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे डीपीटी, रोटा वायरस, डायरिया और न्यूमोकोकल मतलब की निमोनिया का टीका लगाया जाता है। ये सारे टीके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने 6 हफ्ते पे टीका लगा लिया और फिर बाद में छोड़ दिया, मैं उन सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये टीके बार बार इसलिए लगवाए जाते हैं ताकि शरीर में बार बार उनका एक्सपोजर होगा तो ही वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे पाएंगे। अगर आप इनकम्प्लीट टीकाकरण करेंगे तो पूरी तरह से इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता शरीर को नहीं मिलती है। 6, 10, 14 फिर 9 महीने में MMR, ये सारे तो कंपल्सरी वैक्सीन है जो अभी आपको आमतौर पर सभी सरकारी संस्थाओं में भी उपलब्ध है। उनके अलावा जैसे कुछ टीके हैं जैसे कि चिकन पॉक्स,
0: अच्छा,
1: टाइफाइड का टीका, हालांकि टाइफाइड का टीका टाइफाइड से नहीं बचाता है, क्योंकि देखिए टाइफाइड खाने पीने की गड़बड़ी से होती है। आपको हल्के रूप में टाइफाइड हो सकता है मगर टाइफाइड का टीका जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, जैसे हेपेटाइटिस है। ये सारे जो है जो भी खाने पीने के जरिए होते हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये बताना चाहती हूँ कि वो माइल्ड फॉर्म में वो उन बीमारी को कर सकते हैं मगर वो उनके कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पता भी चलता है तो आप ये ना सोचे कि मैंने तो इसका टीका लिया था फिर मुझे कैसे हो गया। जैसे निमोनिया के लिए मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जितने भी टीकेकरण है वो सब खतरनाक बीमारियों के लिए है, जैसे कि न्यूमोकोकल, वो आपको निमोनिया जो न्यूमोकोकल कीटाणु से जो होता है उससे वो बचाएगा, मगर और भी बहुत तरीके से निमोनिया होते हैं जो कि

0: खतरनाक नहीं होते हैं,
1: अच्छा,
0: वो जब निमोनिया से वो नहीं बचा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीकाकरण टाइमली लीजिए। और मैं स्पेशली इस माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि टीकाकरण जिनका डिले हो जाता है या छूट जाता है, वो भी घबराएं ना, वो डॉक्टर से जाके जरूर संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, मतलब कि अगर कोई टीका छूट गया है तो भी उसका भी सॉल्यूशन है। हो सकता है कम डोज देना पड़े, अभी हमारे पास टाइम है कि उसको हम दे
1: दे
0: सकते
1: सकते हैं
0: हैं।
1: जी।
0: तो इसीलिए ये ना सोचे कि अब वो उस बीमारी से अब हम उसको बचा ही नहीं सकते हैं, वो डॉक्टर से संपर्क करें और उससे उनका निदान जरूर निकलेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: टीकाकरण जरूरी क्यों, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निशा चौधरी की भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
5: ज्ञान विज्ञान
6: इतिहास के पन्नों से,
5: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
6: मौसम का मिजाज,
5: अपने शहर की खबरें,
6: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
5: और भी बहुत कुछ।
4: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली समाचार प्रभात, और फिर 8:15 से मॉर्निंग न्यूज। 8:30 से हम आपको आकाशवाणी के रांची केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र

0: से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा

0: का संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की

0: सलाह दी है, घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का
2: गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अरेस्ट्स 8 पीपल एसोसिएटेड विद पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद। सेंटर रिव्यूज बिलो नॉर्मल रेनफॉल सिचुएशन एंड पोटेंशियल ड्राउट कंडीशंस इन सर्टन एरियाज अक्रॉस कंट्री ड्यू टू एल नीनो। IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment and employment both in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-film, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north-south corridor significantly, enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
2: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first 4 approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 1,500 crore rupees. Our correspondent has the details.
4: The newly operational CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility represents a major milestone in India's journey towards building a self-reliant technology ecosystem. Once fully ramped up, the plant will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. It will offer comprehensive end-to-end packaging and testing services, including wafer sorting, package design and failure analysis. Driven by rapid advancements in artificial intelligence and high-performance computing, meeting the facility

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए झारखंड को मिला अचीवर का दर्जा। देश के टॉप 3 राज्यों में बनाई जगह। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक। कम पानी वाली मिलेट की खेती बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की SIR कार्यक्रम की समीक्षा। कहा, हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो दर्ज। राज्य के संथाल और कोल्हान सहित आधे हिस्से में मॉनसून सक्रिय। 8 जुलाई से पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। और रांची के खेल गांव में 3री जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निशाना लगाकर किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड ने देश के टॉप 3 राज्यों में जगह बनाई है। बेहतर वित्तीय अनुशासन के कारण राज्य को अचीवर श्रेणी मिली है। झारखंड ने टैक्स राजस्व 60% से अधिक रखा और राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे बनाए रखा। संतुलित कर्ज प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर खर्च से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। राज्य में कमजोर मॉनसून और एल नीनो के प्रभाव से पैदा हुई सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राज्य में अब तक सामान्य से 54% कम बारिश दर्ज की गई है। मंत्री ने पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर कम पानी वाली मिलेट की खेती को बढ़ावा देने और आपातकालीन योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं।
1: वर्षा का सदुपयोग करते हुए हम लोग लगभग कम से कम 60% तक बिछड़ा हम लोग ले जा पाएंगे और आशा करते हैं कि जितने भी किसान हैं वो भी जो अन्य फसल हैं उसके तरफ भी अल्टरनेटिव के रूप में आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ जिला में हम लोगों को रिपोर्ट भी हुआ है कि जैसे मोटे अनाज जैसे मड़ुआ एक्सेट्रा, दलहन, तिलहन, इन सभी फसलों का भी किसान ज्यादा उपयोग कर रहे हैं इस साल वर्षा को देखते हुए।
0: इधर राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि नई कृषि नीति के तहत किसानों को आसान शर्तों पर बैंक लोन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ग्लोबल मार्केट लिंकेज की सुविधा मिलेगी, जिससे पारंपरिक खेती एक मुनाफे वाले बिजनेस में तब्दील हो सके।
2: झारखंड मोर और लेस जो है कृषि प्रधान राज्य ही है, खनिज भी है यहाँ पे। हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें किसानों को अधिकतम सब्सिडी मिले, इंडस्ट्री घोषित होने से जो उनके जो एलाइड बेनिफिट्स हैं वो उनको प्राप्त हो, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे हैं। और एग्रीकल्चर पॉलिसी इसी बात को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि किसानों को इसमें अधिकतम किस तरह से हम लोग लाभ पहुंचाए।
0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के रिम्स में अत्याधुनिक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में आंखों की जटिल बीमारियों का आधुनिक इलाज संभव होगा।
3: रिम्स में बेहतर से बेहतर

0: नाम 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित किए जाएंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा की बेटी तनिषा गौतम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगी। गुजरात के सानंद में भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर यह संवाद होगा। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा इस ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आगामी 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में झारखंड सरकार की ओर से आयोजित होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तैयारी तेज कर दी गई है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा यह आयोजन राज्य के विजन 2050 को गति देने और झारखंड को आईटी, एआई तथा औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
1: हम इंडस्ट्री, आईटी और टूरिज्म को नेशनल लेवल पर भी प्रमोट करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग दिल्ली से करेंगे। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मानसून में ट्रेवल करना सबसे सेफ है। हमारे यहां कोई लैंडस्लाइड्स नहीं है, कोई फ्लड नहीं है, किसी पर्यटक के रास्ते बंद होने की स्थिति में फंसने की कोई संभावना नहीं है। तो हम दो पॉलिसी का ड्राफ्ट वहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक झारखंड की टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट है और दूसरा झारखंड की होम स्टे पॉलिसी का ड्राफ्ट है।
0: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव को नया समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 6 और 7 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले जून में समय मांगने के कारण उनकी पूछताछ टल गई थी। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड अंतर्गत बेलबेड़ा गांव में मलेरिया का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्क्रीनिंग अभियान में अब तक 336 लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 160 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभावित इलाके में मेडिकल टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं और संक्रमितों को मौके पर ही दवाएं दी जा रही हैं। राज्य के आधे हिस्से में अगले 4 दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। इससे संथाल और कोल्हान सहित पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 8 जुलाई से मॉनसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खुद निशाना लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: इनके पीछे जो योग अभ्यास है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी संस्कृति यही बताती है कि हम अपने जीवन में या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ हम काम कर रहे हो, हमारे पास अनुशासन होने की आवश्यकता है। धैर्य एक सबसे बड़ी बात, मैं समझता हूँ कि यदि हम धैर्य का धारण करते हैं तो हम धर्म का पालन करते।
0: और अब अखबारों की सुर्खियाँ। रांची से प्रकाशित अधिकतर प्रमुख अखबारों ने राज्य के वित्त मंत्री द्वारा सुरक्षा वापस किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नाराज वित्त मंत्री ने तीनों गाड़ियां और सभी 16 सुरक्षाकर्मी लौटाए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड की पंचायतों को मिलेंगे 14,231 करोड़। प्रभात खबर के शब्द हैं, वित्त विभाग में लटक रही योजनाओं की फाइल, तीन मंत्रियों ने जताई आपत्ति। दैनिक जागरण लिखता है, जेपीएससी सिविल सेवा पीटी में 2,204 सफल। और अंत में मुख्य समाचार, नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए झारखंड को मिला अचीवर का दर्जा। देश के टॉप 3 राज्यों में बनाई जगह। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक। कम पानी वाली मिलेट की खेती बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्य निर्वाचन

पदाधिकारी के रवि कुमार ने की SIR कार्यक्रम की समीक्षा, कहा हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो दर्ज। राज्य के संथाल और कोल्हान सहित आधे हिस्से में मॉनसून सक्रिय, 8 जुलाई से पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। और रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निशाना लगाकर किया शुभारंभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए समर्थवान है, चलते रहेंगे।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में

0: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
1: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
5: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सेहरा फिल्म का गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, रचना है हसरत जयपुरी की और धुन बनाई है रामलाल ने।

सियरा फिल्म के इस गाने को संगीत से सजाया रामलाल ने। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में रामलाल एक प्रसिद्ध बांसुरी और शहनाई वादक के साथ साथ एक अत्यंत प्रतिभाशाली संगीतकार थे। उन्हें मुख्य रूप से वी शांताराम की 1963 की सुपरहिट फिल्म सेहरा के लिए जाना जाता है। और ये जो गाना अभी आपने सुना वो आज भी बहुत लोकप्रिय है। संगीत निर्देशन में कदम रखने से पहले रामलाल मुगले आजम, गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्मों में अपनी उत्कृष्ट शहनाई और बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने राज कपूर की पहली फिल्म आग में भी शहनाई बजाई थी।

गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी आशा भोसले की, रचना थी हसरत जयपुरी की और धुन बनाई रामलाल ने।

श्रोताओं, 4 जुलाई 2007 को संगीतकार रामलाल इस दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए संगीत की विरासत। उन्हें हम नमन करते हैं और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

0: अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पचपदरा में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखे जाने और जोधपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि नए टर्मिनल को लेकर वहां लोगों में बहुत उत्साह है। इसके बनने से अधिक पर्यटक जोधपुर आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवस्था मजबूत होगी।
2: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई संपर्क से देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, ओसिया और थार जैसे क्षेत्र पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन, रेस्तरा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आधुनिक एयरपोर्ट निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति देगा, जिससे जोधपुर क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना। स्वीकार कीजिए श्वेता का नमस्कार। कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं युगल गाने। इश्क तो हर आशिक का हम सफर रहा है, शायरों ने भी तो मोहब्बत पे क्या खूब शेर कहे हैं। कहीं चंद लफ्जों में एक आह छुपा दी, तो कहीं बयां कर दी बेशुमार मोहब्बत। कोई मुंतजर है उसका कितनी शिद्दत से, कोई मुंतजर है उसका कितनी शिद्दत से। वो जानता है मगर अनजान बना रहता है।

शहीद फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत और संगीत था प्रेम धवन का। खनकता कंगन है या है झुमका तुम्हारा जो चैन चुराए है, या फिर नींदे उड़ाने का ये काम तेरी बिंदिया का है।

अभिमान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गाने के बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई एसडी बर्मन ने। कार्यक्रम सुरंजना में श्रोता सुन रहे हैं युगल गाने। कार्यक्रम में समय हो चला है अंतराल का।

0: पिघलती फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: हेलो मनभावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

सुरंजना में अगला गाना लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और संगीतबद्ध किया एसटी बर्मन ने। इस गाने में कुछ ऐसा जादू है जो शायद ही कभी दोहराया जा सकता है।

साल 1965 में फिल्म तीन देवियां का ये गाना नंदा और देव आनंद पर फिल्माया गया था। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाजें दी थीं।

एस डी बर्मन की बेहतरीन धुनों में से एक थी ये धुन। आंखों के इर्द गिर्द घूमने वाले इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने। कार्यक्रम सुरंजना में श्रोता सुन रहे थे युगल गाने। कार्यक्रम का आज का सुरीला सफर बस यहीं तक। दीजिए कार्यक्रम से श्वेता को अनुमति। नमस्कार।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। ये सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन, राग है अलहया बिलावल।

0: आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन, राग था अलहया बिलावल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केइको फुजिमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब समाचार विस्तार से। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की 6 दिवसीय राजकीय अंतिम यात्रा तेहरान में आज से शुरू होगी। अधिकारियों को इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
1: ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिगफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। ये अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पूर्व विदेशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि श्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में होंगे।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री मोदी की ये इंडोनेशिया की 4थी यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता जाने का भी कार्यक्रम है। योग्यकार्ता में श्री मोदी प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि मलक्का जलडमरू मध्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यात्रा के दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों नेता इस दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के समापन में श्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए दुर्गा प्रसाद।
0: गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

0: XHIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। 51 वर्षीय फुजिमोरी पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं और चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। थी इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के सर्वोच्च चुनाव प्राधिकरण ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेज को हराया। पहले दौर के मतदान में दोनों उम्मीदवार 33 अन्य उम्मीदवारों से आगे चल रहे थे। इस बार के चुनाव में अपराध एक प्रमुख मुद्दा था। मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंचेनू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलेक्जेंडर मुंचेनू को राष्ट्रपति माया सांडू ने नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मुंचेनू ने अपने इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। राष्ट्रपति माया सांडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जल्द ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तब तक मुंचेनू अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। राष्ट्रपति सांडू विभिन्न संसदीय दलों से परामर्श के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन करेंगी। अमेरिका आज अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 4 जुलाई को 1776 में आज ही के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वाधीनता की औपचारिक घोषणा की थी। स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी के कारण कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे दक्षिण यूरोप में सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्पेन में कैटालोनिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जंगल में लगी भीषण आग अब भी बेकाबू है, जिससे लगभग 2300 हेक्टेयर भूमि की वनस्पति नष्ट हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में लू के कारण 3700 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्पेन में गर्मी के कारण जून के अंत से अब तक 1000 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया है। कोलंबिया के जॉन एरियास ने 14वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल किया। अंतिम 16 के मैच में अब कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कनाडा के फेलिक्स ओवर एलियासिम ने अमेरिका के माइकल झिंग को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बीच महिला सिंगल्स में अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला और कोको गॉफ के साथ साथ जापान की नाओमी ओसाका भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केको फुजिमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, तोशी साबरी बॉलीवुड गायक और संगीतकार हैं। उन्हें फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज के गाने माही से प्रसिद्धि मिली। आज के दिन तोशी साबरी का जन्म हुआ, इन्हें जन्मदिन की बधाई। तोशी ने अपने भाई शारिफ के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी बनाई और इसी नाम से वे म्यूजिक कंपोज करते हैं।

हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की। गाने की बोली लिखी कुमार ने और धुन बनाई शारिद तोशी ने।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे

अंतराल हुआ पूरा। श्रोताओं, एमएम क्रीम, जिन्हें दक्षिण भारत में एमएम कीरावानी के नाम से जाना जाता है, आज इनका जन्मदिन है। इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, गायक और गीतकार हैं एमएम क्रीम। हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने एमएम क्रीम नाम अपनाया। उन्होंने जिस्म, जुर्म, पहेली और आरआरआर जैसी लोकप्रिय फिल्मों में शानदार संगीत दिया है।

एमएम क्रीम ने हिंदी फिल्मों में ये पहला गाना रिकॉर्ड किया था। कुमार सानू की ये आवाज़ थी और इस गाने के साथ, कुमार सानू के साथ इस गाने को गाया अलका याग्निक ने। गाने के बोल थे इंदिवर के और धुन बनाई एमएम क्रीम ने। फिल्म का नाम था क्रिमिनल।

एमएम क्रीम के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे निलेश मिश्रा का लिखा हुआ गाना। आवाजें थी श्रेया घोषाल और शान की। फिल्म का नाम है जिस्म।

जख्म फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज थी अलका याग्निक की, रचना थी आनंद बख्शी की और धुन बनाई एमएम क्रीम ने। और अब आइए सुनते हैं आरआरआर फिल्म का गाना, आवाजें विशाल मिश्रा और राहुल सिपलीगुंज की। गाने के बोल लिखे चंद्र बोस ने और धुन बनाई एमएम क्रीम ने।

एमएम क्रीम द्वारा रचित इस गाने ने इतिहास रच दिया और ये सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जीतने वाला पहला भारतीय गीत है। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारिश

0: क्षण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। स्वीकार कीजिए गीता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुहाना सा मौसम, आसमान साफ और हवाएं ताजगी भरी और पूरी प्रकृति नई ऊर्जा से भरी हुई है। जी हाँ, यही तो मौसम है एक नई शुरुआत का। जैसे पहली बारिश सूखी धरती को हरा भरा कर देती है, वैसे ही हमारे जीवन में कभी कभी एक नया मौसम तो आता जरूर है दोस्तों, जो हमें बदलने का मौका देता है। और सच तो है ना, हम बीते समय में क्यों ना थके हों, निराश हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पर ये मौसम हमें सिखाती है कि छोटी छोटी कोशिशें भी मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब पेड़ पौधों को ही देखिए ना, वे भी नए पत्ते इस समय निकाल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी जिंदगी में नए सपने, नई योजनाएं और नई आदतें जोड़ सकते हैं। इसलिए श्रोताओं, समय को व्यर्थ ना जाने दें, एक लक्ष्य तय करें, खुद पर विश्वास रखें, जिंदगी से प्यार करें और आगे बढ़ते चले जाएं।

डियर जिंदगी फिल्म का गीत अभी आपने सुना अमित त्रिवेदी और जसलीन रॉयल की आवाजों में। गीत कौसर मुनीर ने लिखा और धुन बनाई अमित त्रिवेदी ने। और दोस्तों आज के दिन विशेष की बात करें तो आज है 4 जुलाई और आज ही के दिन साल 1902 में भारत रत्न जैसी विभूति युवाओं के प्रेरणा स्रोत विश्व को भारतीय दर्शन का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने इस धरा को अलविदा कहा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रोताओं, नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे विवेकानंद जी ने मात्र 39 वर्ष के अल्पायु में इतना कुछ कर दिखाया कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। शिकागो की विश्व धर्म संसद में उनका वो ऐतिहासिक भाषण आज भी हमारे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सेवा ही पूजा है, मनुष्य में ईश्वर है, उसे जगाना ही सच्ची पूजा है। श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद जी ने केवल व्याख्यान नहीं दिए बल्कि भारत को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने युवाओं को मजबूत, आत्मनिर्भर और देशभक्त बनने की प्रेरणा दी। रामकृष्ण परमहंस जी के सच्चे शिष्य विवेकानंद ने सनातन धर्म को विश्व पटल पर गौरव के साथ स्थापित किया। उनका पहला सिद्धांत निर्भय बनो था, जो युवाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए था। साथ ही उन्होंने दीन दुखियों की मदद को सबसे बड़ा धर्म माना था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने भी उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और सुनते हैं स्वामी विवेकानंद फिल्म का ये भजन। यशोदास की आवाज में गुलजार की रचना है और सलील चौधरी का संगीत है।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। और अब श्रोता हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रूपरेखा तैयार की थी। जी हाँ, उनका नाम है पिंगली वेंकैया। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। वे संस्कृत, उर्दू, हिंदी, जापानी जैसी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। 19 वर्ष की उम्र में पिंगली वेंकैया ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हो गए और दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में गए। वहीं उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई, जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। युद्ध के दौरान उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश झंडे को सलाम करना पड़ता है। उन्होंने सोचा, हम भारतीय होकर विदेशी झंडे को क्यों सलाम करें? और यहीं से उनके मन में भारत के अपने राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना जागृत हुई और स्वदेश लौटकर वेंकैया ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने 30 से भी ज्यादा देशों के झंडों का गहन अध्ययन किया और साल 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी जी को अपना डिजाइन प्रस्तुत किया। बाद में उसे संशोधित कर केसरिया, सफेद और हरा तिरंगा बनाया, जिसमें अशोक चक्र जोड़ा गया और ये डिजाइन 1947 में स्वतंत्र भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बना। और श्रोताओं, आज ही के दिन 4 जुलाई 1963 को विजयवाड़ा में मात्र एक झोपड़ी में उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

आज के दिन की बात हम कर रहे हैं श्रोताओं, तो आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी नानक सिंह को, जिनका जन्म आज ही के दिन 1897 को विभाजित भारत के पंजाब में हुआ था। वे पंजाबी उपन्यास के जनक माने जाते हैं और उन्होंने सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कई रचनाएं लिखी थी। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में एक मियां दो तलवारा, छेती सवेरा और खूनी वैशाख, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखी गई कविता थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन कर रहे हैं। और अब बात एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर संघर्ष किया। जी हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू, जिनका जन्म आज ही के दिन 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व करते हुए गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का उपयोग किया। ब्रिटिशों ने साल 1924 में उन्हें पकड़कर वीरता से भरे इस युवा क्रांतिकारी को मार डाला। वे आज भी साहस का प्रतीक हैं। आज उनकी जयंती पर भी हम उन्हें नमन करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता

0: चलूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। और श्रोताओं, जैसा कि हम आज के दिन विशेष की चर्चा कर रहे हैं, तो हर साल आज के दिन को जैक फ्रूट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कटहल जैसे पोषक और बहुपयोगी फल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। श्रोताओं, कटहल को हमारे देश में वृक्षों का मांस कहा जाता है, क्योंकि ये स्वाद और पोषण दोनों में भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, सी और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हृदय, पाचन और रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। श्रोताओं, कटहल न केवल हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि इसकी खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। जैक फ्रूट डे हमें इस बहुमूल्य फल के महत्व को समझने और अपने आहार में इसे स्थान देने की प्रेरणा करता है प्रेरणा देता है श्रोताओं, तो चलिए इस बहुपयोगी फल के प्रति हम जागरूक होते हैं और सुनते हैं ये गाना।

बेनी दयाल और हिमालय कपूर की आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बैंड बाजा बारात। और दोस्तों अब बात एक ऐसे उत्सव की जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, पर्यावरण की रक्षा सिखाती है और धरती माँ को हरा भरा बनाने का संदेश प्रदान करती है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव की, जो हर साल जुलाई माह के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। ये भारत का एक राष्ट्रीय वृक्षारोपण उत्सव है जिसका मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। श्रोताओं, वन महोत्सव की शुरुआत साल 1950 में हुई थी। तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री ने इसे राष्ट्रव्यापी रूप दिया और उन्होंने इसे जुलाई के पहले सप्ताह में इसलिए रखा क्योंकि इसी समय मानसून की शुरुआत होती है और पौधों के जीवित रहने की संभावना भी ज़्यादा होती है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं, और वहीं जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और भूस्खलन रोकती है। साथ ही पेड़ पौधे फलों, छाया, लकड़ी और औषधियों का स्रोत भी है। और सबसे ज़रूरी बात कि ज़्यादा हरे भरे क्षेत्र हमारे लिए तनाव कम करते हैं और हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। इस तरह से श्रोताओं, हमें चाहिए कि हम अपने अपने घरों के आसपास बगीचे, बालकनी या छत पर पेड़ ज़रूर लगाएं। नीम, पीपल, आम, गुलमुहर, बरगद जैसी स्थानीय प्रजातियों के पौधे चुनें और पौधों की देखभाल करें, नियमित रूप से उन्हें पानी दें, खाद डालें। याद रखें श्रोताओं, एक पेड़ लगाना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल उपहार है।

हरियाली और रास्ता फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र थे गीतकार और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और दोस्तों अब बात मनोरंजन जगत की। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार को जिनकी कलम से निकले शब्द आज भी दिलों को छू जाते हैं। जी हाँ, वो हैं पंडित भरत व्यास, हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के महान गीतकार। उनकी रचनाएं देशभक्ति, भक्ति प्रेम और जीवन दर्शन से भरी हुई हैं। भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही कविता, तुकबंदी और फिल्मी गीतों की पैरोडी बनाने में उनकी रुचि रही थी। फिल्मी सफर के तहत साल 1942-43 में वे मुंबई पहुंचे और उन्होंने पहला गीत फिल्म दुहाई के लिए लिखा। उन्होंने कुल 210 से भी अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखे। कुछ फिल्मों में अभिनय, पटकथा और संवाद भी लिखा। यहाँ तक कि एक फिल्म रंगीला राजस्थान निर्देशित भी की। उनकी बहुआयामी प्रतिभा, गीतकार, कवि, नाटककार, अभिनेता और संगीतकार उन्हें सबसे अलग बनाती है। आज ही के दिन 4 जुलाई 1982 को मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके गीत आज भी अमर हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं सती सावित्री फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत लिखा है भरत व्यास ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और श्रोता, मनोरंजन जगत की बातें हम कर रहे हैं तो अब बात हिंदी सिनेमा के उस अभिनेत्री की जिन्हें ब्यूटी क्वीन, परी चेहरा, नसीम और भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कहा जाता है। जी हाँ श्रोताओं, अभिनेत्री नसीम बानो, जिनके खूबसूरती, अभिनय और आकर्षण ने साल 1930-40 के दशक में दर्शकों को दीवाना बना दिया था। उनकी बेटी सायरा बानो भी बाद में स्टार बनी। अभिनेत्री नसीम बानो का असली नाम रोशन आरा बेगम था और उनका जन्म 4 जुलाई 1916 को पुराने दिल्ली में हुआ। उनकी मां शमशाद बेगम उस समय की प्रसिद्ध गायिका और कलाकार थी। नसीम बानो का मन बचपन से ही अभिनय की ओर था। साल 1935 में उन्होंने सुहराब मोदी के फिल्म खून का खून से डेब्यू किया था और उनकी असली पहचान साल 1939 में आई फिल्म पुकार से हुई, जिसमें उन्होंने साम्राज्ञी नूर जहां का किरदार निभाया और इसी फिल्म की सफलता के बाद उन्हें परी चेहरा का खिताब मिला। उनके बेहतर प्रदर्शन के कारण मरणोपरांत उन्हें साल 2024 में भारत सरकार के द्वारा से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नसीम बानो ने सिनेमा में महिलाओं के लिए नया रास्ता दिखलाया था। उनकी सुंदरता, सादगी, मेहनत और कलाकारी आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं।

पुकार फिल्म का ये गाना था। शीला की आवाज़ में कमाल अमरोही थे गीतकार और संगीतकार थी मीर साहिब। और श्रोताओं, फिल्म जगत के लिए आज का दिन बेहद ख़ास है, क्योंकि आज के दिन हम मना रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक म्यूज़िक जादूगर, ऑस्कर विजेता संगीतकार एमएम क्रीम यानी एमएम केरावणी का जन्मदिन। जी हाँ, उनका जन्म आज ही के दिन 1961 को आंध्र प्रदेश के कोवूर में हुआ था। एक संगीत परिवार में जन्मे एमएम क्रीम ने न सिर्फ तेलुगु बल्कि हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा को अपनी अमिट धुनों से सजाया है। आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया गीत रोग फिल्म का ये गाना।

रोग फिल्म का ये गीत था केके की आवाज़ में। नीलेश मिश्रा ने गीत लिखा और धुन बनाई एमएम क्रीम ने। और श्रोताओ, आप चलते चलते आपको आज के मौसम का हाल बताते चले। आज शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कहीं कहीं वर्षा गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। और इस बीच आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से मुझे यानी गीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: जयपुर।
1: नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
3: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से

0: एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सारंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक गीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में खामोशी शब्द से जुड़े कुछ गीत। मोहब्बत का सुरूर जब चढ़ा दो दिलों में, प्यार की बगिया में खिले खूबसूरत से फूल, खूबसूरत एहसास से जिंदगी का चलन भी बदल गया। जिंदगी में कुछ इस तरह हुआ उजाला कि मिट गए अंधेरे उदासियों के और खामोशियों ने सीख लिया गुनगुनाना।

धड़कने लगा है दिल तुम्हारे नाम पे, महकने लगे हैं आंचल में तुम्हारे ही प्यार के फूल, मीठी अनुभूतियों संग गूंजने लगी है रूम रूम में, जब तुमने कहा मुझे अपना सा तो खामोशियों को भी जुबां मिलने लगी और सुना दी उसने मोहब्बत की दास्तान।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से शीर्षक गीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं और आज हम आपको सुनवा रहे हैं खामोशी शब्द से जुड़े गाने। मन जश्न मनाने लगा और बाहरी दुनिया को खबर ही नहीं रही। जब तुम मिले तो जिंदगी के रास्तों में रौनक आ गई, पर दिल खामोश था कि ना जाने फिर कब मिले, क्योंकि सुनना है तुम्हारे धड़कनों के संगीत को, हर पल निहारना है तुम्हें और सुनना है वो शब्द जो गूंजते हैं तुम्हारे खामोशी में, तुम्हारे चुप्पी में।

सुंदर सी दुनिया प्रेम की, फिर ये बेचैनी, ये घबराहट क्यों? ऐसा लगता है बेचैन है मन दिल की बातों से, क्यों सुनाया तुमने दिल की धड़कनों पर अब सहम गया है हमारा दिल। सुहानी लगती थी उसकी अनकही बातें, काश उसके खामोशी के खजाने से मैंने चुन लिए होते कुछ शब्द।

आज के शीर्षक गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीतों को आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किया वे थे खामोशियां, मझधार, लक्की और लिबास। आवाजें थी अरिजीत सिंह, अलका याग्निक, सोनू निगम, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। गीत लिखा रश्मि सिंह, समीर और गुलजार ने और संगीत तैयार किया जीत गांगुली, नदीम श्रवण, अदनान सामी और आर डी बर्मन ने। और श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का शीर्षक गीत कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।
3: अंगना महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

पक्षियों से गपशप करने का और मानसून में घूमने का प्रोग्राम बना लिया होगा। मैनु बड़ा अच्छा लगता है जब प्रकृति अपने सुंदरता की पराकाष्ठा में होती है। चारों ओर हरियाली, कूकते कोयल, खिले हुए मासूम फूल और ये ठंडी ठंडी हवाएं। सच पूछिए तो अपने आसपास स्वर्ग की अनुभूति तभी होती है जब हम प्रकृति के बहुत बहुत करीब होते हैं। पेड़ों पर चहचहाती गोरैया, हमारे गमले में हमसे कुछ कहते खिले हुए फूल और खेतों में लहलहाती हुई फसलें, ये धरती का आभूषण तो है ही पर हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही जरूरी तत्व हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमारे आसपास माता प्रकृति की ये कृपा न रही तो हम भला जीवन को आगे लेकर कैसे जाएंगे। हालांकि ये चिंताजनक है कि आज कारखाने और तकनीक की आंधी में कहीं कहीं हम प्रकृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी हम सभी उसकी महत्ता से इनकार नहीं करते, तभी तो पैसे खर्च करके हम छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां नदी हो, झरने हो, पहाड़ हो और प्रकृति का अपनापन भी हो। पर हमारे घर के आसपास जो प्रकृति है उसकी भी तो चिंता बहनों हमें करनी ही होगी। मनो कार्यक्रम अंगना में आप सबों का स्वागत है, जोहार नमस्कार। और आज हम इसी विषय पर थोड़ी चिंता करेंगे मिलकर कि किस तरह से हम महिलाएं प्रकृति की हरी भरी चादर को बचाकर रख सकते हैं। और इसके लिए अगर शुरुआत करनी होगी तो सबसे पहले घर के गमलों में, बालकनी में या आंगन में कुछ पौधारोपण जरूर करें। अगर कुछ ऐसे वृक्ष हम अपने डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं जिसे सूर्य की रोशनी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती हो तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। प्रकृति को बचाने के लिए हम कूड़ों के प्रबंधन पर भी ध्यान दें, क्योंकि रसोई से जो भी कूड़े निकलते हैं अगर वो खाद के रूप में प्रयोग लाए जा सकते हैं तो हम उनका प्रयोग करें, अन्यथा उसे बिल्कुल ही निश्चित जगह पर रखें। जहां तक संभव हो जब भी घर बनाएं या घर का विस्तार करें तो पेड़ पौधों को कटने से रोकें। बहनों, प्रकृति की उपेक्षा करने के कारण ही आज जलवायु परिवर्तन है और जो मानसून है उससे हमारी मुलाकात जल्दी नहीं हो पा रही है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती हुई गर्मी, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमारे और प्रकृति के बीच एक दूरी सी बनती जा रही है। हम महिलाएं भी तो इस विषय पर अपनी भूमिका निभा सकती हैं। हम अपने घर के बच्चों को भी ये सिखाएं कि वह सुबह शाम पौधों में जल डालें और पौधों के आसपास अगर घास फूस उग गए हों तो उनको हटाकर उनकी सफाई करें। मानव सृष्टि की सुरक्षा, इसकी समृद्धि तभी संभव है जब ये प्रकृति बची रहेगी। तो बहनों, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम भी अपनी साझेदारी इस अभियान में करें और अपने घर में और घर के आसपास हरियाली को जगह दें।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म शोर का ये गीत। बोल थे इंद्रजीत सिंह तुलसी के और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बहनों, सुंदर दिखना भला कौन नहीं चाहता, और हम सभी चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें, हमारी त्वचा खूबसूरत दिखे और हमारे चेहरे की चमक हमेशा बनी रहे। पर हमारी त्वचा सुंदर कैसे हो, क्या हम जानते हैं कि त्वचा कितने प्रकार की होती है और उसको हम किस तरह से हर बदलते मौसम के साथ सुंदर बनाकर रख सकते हैं। मैनू, आज हम दो सौंदर्य सलाहकार से बात करेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं मुस्कान सिंह को, जो हमसे बताने जा रही हैं कि त्वचा की देखभाल हम कैसे करें, और इसके बाद हम बात करेंगे मंजीत कौर से, जो हमें बताएंगी टैनिंग की समस्या के बारे में और उसके समाधान के विषय में।
1: बहनों, मैं हूँ मुस्कान, और आज मैं आप सभी को त्वचा के प्रकार और इसकी सुंदरता के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहनों, हमारी सुंदरता सिर्फ महंगे जेवर और कीमती कपड़ों से नहीं दिखती है, बल्कि त्वचा की सेहत और चमक पर निर्भर करती है। गर्मियों की तेज धूप से त्वचा को बचाने के लिए बाहर निकलते समय कम से कम SPF 30 प्लस वाली बॉडी स्प्रे सनस्क्रीन 20 मिनट्स पहले लगाए, चेहरे को स्पार्क या टोपी से ढके हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और धूप का चश्मा UV प्रोटेक्शन लगाए, साथ ही हर 2-3 घंटे में सनस्क्रीन दोबारा लगाएं और पर्याप्त पानी पीकर हाइड्रेट रहें। त्वचा की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि घर से बाहर निकलते समय 20 से 30 मिनट पहले चेहरे, गर्दन या हाथों और पैरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन का उपयोग करें। अगर आप लंबे समय तक बाहर हैं तो 2 घंटे में सनस्क्रीन दोबारा लगाएं, सूती कपड़े पहने और हल्के रंग का ढीले कपड़ा पहने। रूखी त्वचा, ड्राई स्किन की देखभाल के लिए लगातार नमी मॉइस्चराइजर बनाए रखना।

0: जेंटल प्रोडक्ट्स का उपयोग, गर्म पानी से परहेज और पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है। नहाने के तुरंत बाद गाढ़ा मॉइस्चराइजर या तेल लगाएं और त्वचा को रगड़ने से बचें। सालों भर रूखी त्वचा के लिए विशेष देखभाल, 5 से 10 मिनट से अधिक ना नहाएं और गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी का उपयोग करें, क्योंकि गर्म पानी प्राकृतिक तलों को सोख ले। नहाने के बाद जब त्वचा हल्की नम हो तब तुरंत क्रीम या लोशन लगाएं या नारियल पानी लगाएं। मुलायम बनाने के लिए नारियल तेल, एलोवेरा या मलाई का प्रयोग करें। यदि हवा रूखी हो तो बेडरूम में निमेटियम का उपयोग करें। ऊनी और सिंथेटिक कपड़ों से बचें, सूती कपड़े पहने। आंखों की सुरक्षा के लिए यूवी प्रोटेक्ट धूप का चश्मा पहने ताकि आपकी आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा बची रहे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जब धूप सबसे तेज होती है बाहर निकलने से बचें। तैलीय त्वचा को हम इस तरह से पहचानेंगे। अगर आपके या हमारे त्वचा या फेस पर हर समय चमकदार, चिकना या चिपचिपा दिखाई देता है तो वह तैलीय त्वचा कहलाता है। तैलीय त्वचा को पहचानने के लिए कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे कि त्वचा छूने पर चिपचिपा चिकनी लगती है और मेकअप लगाने के बाद तुरंत धुल जाती है, हट जाती है, तो यह तैलीय त्वचा कहलाता है। तैलीय त्वचा के छिद्र बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। तैलीय त्वचा को ठीक करने के लिए अच्छी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी दिन में 6 से 8 गिलास पीना चाहिए। त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए एलोवेरा जेल लगाएं और नारियल तेल का उपयोग करें।
1: त्वचा की सुंदरता, इसके प्रकार और इससे संबंधित सलाह। मैंने अभी आप सुन रही थी इस विषय पर जानकारी सौंदर्य विशेषज्ञ मुस्कान सिंह से। और आइए अब सुनते हैं कि टैनिंग की समस्या हो तो हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और हमसे ये बात साझा कर रही हैं मंजीत कौर।
2: मैं मंजीत कौर बोल रही हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। गर्मियों में महिलाओं को बहुत त्वचा संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं SPF 50, 100, 80। उससे क्या होगा ना, आपकी त्वचा एकदम सही रहेगी और जो टैन है सब निकल जाएगा। सबको गर्मियों में लगाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, सीधा सन का इफेक्ट पूरा फेस में पड़ता है, इसीलिए लगाना ही चाहिए सब महिलाओं को। घर में आप मतलब हल्दी, बेसन, उसमें से थोड़ा हनी और थोड़ा दही, सब अच्छे से मिक्स करके उसको लगा के 20 मिनट्स फेस में रख के आप धो सकते हैं। उससे भी बहुत हद तक टैन जाता है। एलोवेरा में ऑयल, कोकोनट ऑयल भी मिला के लगा सकते हैं। घर में एलोवेरा का पौधा लगा दे, वो भी वर्क करता है। उसका पूरा जेल निकाल के उसमें कोकोनट ऑयल मिला के वो भी फेस में लगाने से टैन बहुत हद तक रिमूव होता है।
1: तो बहनों, ये छोटी छोटी बातें हमें सिखाती हैं कि किस तरह जानकारी रखें तो घरेलू साधन से भी अपनी त्वचा को सुंदर रख सकते हैं और खुद को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। बहनों, झमाझम मानसून की बारिश के बीच शहर की सड़कें जब जल से बिल्कुल डूब जाती हैं और कहीं कहीं तो कीचड़ भी फैल जाता है, ऐसे में खुद को फैशनेबल बनाए रखना हम सबों के लिए थोड़ी चुनौती लेकर आता है। तो बहनों, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, ऐसे में गहरे ब्लू रंग के कपड़े पहनना बड़ा ही अच्छा लगेगा और साथ ही बारिश के दौरान ये हमारे आसपास की उदासी को भी दूर करता है। इस सीजन में जैकेट पहनना भी बड़ा सिंपल लेकिन अच्छा लगता है, इससे हम भीगने से भी काफी हद तक बच सकते हैं। बहनों, इस मौसम में ज्यादा कुछ ना करें, सिंपल बने रहें। नाक में पहने सुंदर सी नोज पिन या नोज रिंग, इससे हमारे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। बहनों, ये नोज पिन पहनना बहुत ज्यादा ओवर नहीं लगता, हर तरह के आउटफिट के साथ ये आराम से एडजस्ट हो जाती है। और अगर आप भी हल्के से कोई डिजाइन ढूंढ रहे हैं तो एक सिंपल सी नोज पिन बहुत ही सुंदर आपके चेहरे को बनाएगी। बहनों, बरसात के मौसम में त्वचा से संबंधित परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, जैसे कि खुले रोम छिद्र या बेजान त्वचा, ऑयली स्किन या कभी कभी मुहासे भी। ये इसलिए होता है कि कई बार हम इस मौसम में बालों को हल्का गीला रखते हैं और उसे सुखाते नहीं है, इसकी वजह से कई बार बालों का झड़ना भी बढ़ जाता है। तो जरूर जब भी आप बारिश में भीग जाएं तो तुरंत अपने चेहरे और पैरों को पोंछ लें। चेहरे के लिए एक मेडिकेटेड फेस वॉश का प्रयोग करें। अगर चेहरे पर मौजूद है प्राकृतिक तेल तो उसे बने रहने दें, उसे हटाएं नहीं।

सुन के दौरान अपने बालों को तौलिए से थपथपाते हुए सुखाएं और गीले बालों को न तो खींचे और न ही इन पर कंघी करें। कई बार बारिश के दौरान पानी और कीचड़ से भरी सड़कों पर चलते समय पैरों को ही तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इतना ही नहीं बहनों, पैर लंबे समय तक गीले और नम बने रहते हैं। आप चाहे खुले हुए शूज पहने या बंद, पर हमारे पैर जब लंबे समय तक गीले बने रहते हैं तो पैरों में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। तो बहनों, अगर कभी भी पानी में भींग जाएं तो घर आने के बाद तुरंत अपने पैरों को साफ करें और उस पर मॉइस्चराइजर लगाएं। बहनों, मौसम कोई भी हो पर खुद को व्यवस्थित रखना, प्रेजेंटेबल बनाकर रखना अच्छा लगता है। तो इस मौसम का आनंद लें, बरसात से कोई शिकवा शिकायत ना करें, हर बूंद का आनंद लें और वीकेंड में मानसून को एंजॉय करें।

बहनों, अभी आपने सुना फिल्म होटल का ये गीत आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज़ में। संगीत दिया था उषा खन्ना ने और बोल थे इंदिवर के। बहनों, मानसून के मौसम के आते ही लोगों के किचन में शुरू हो जाता है गर्मा गर्म पकौड़ी बनाने का सिलसिला। हर घर से पकौड़े और कचौड़ी की महक आने लगती है। बरसात का आनंद दुगना हो जाता है जब हमारे सामने चाय और कॉफी का कप हो और कुछ टेस्टी कचौड़ी या पकौड़ी चटनी के साथ हो। ऐसे में शाम और सुनहरी हो जाती है। बहनों, हमने कार्यक्रम अंगना में आज बात किया वन महोत्सव के बारे में और साथ ही हमने अपनी सुंदरता और अपने पैर के तलवों की देखभाल पर भी बात की। तो चलते चलते क्यों ना थोड़ी सी बातचीत स्वाद पर भी कर ली जाए। आज हम बात करते हैं मूंग दाल से बनी हुई कचौड़ी की। इसे बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए और आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा कप घी। साथ ही स्टफिंग करने के लिए यानी भरने के लिए 1/2 कप मूंग दाल धोकर 30 मिनट के लिए भिगोई हुई, 3 बड़े चम्मच तेल, छोटा चम्मच जीरा, छोटा चम्मच सौंफ, छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी हींग, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 कप बेसन, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, साथ ही छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, छोटा चम्मच गरम मसाला और छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी। और इन सब के साथ बहनों, तलने के लिए तेल तो जरूरी है। बहनों, आटा गूंथने के लिए एक बड़ी कटोरी में मैदा, नमक और अजवाइन को मिला लें। घी डालकर इसे अच्छी तरह आटा बनाकर नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को ढककर 30 मिनट के लिए रख दें और अब तैयार करें इसमें भरने वाली सामग्री। तो इसके लिए प्रेशर कुकर में भिगोई हुई मूंग दाल और 2 कप पानी डालकर 3 सीटी आने तक पकाएं। अब इसके बाद पानी निकालकर इस मूंग दाल को ठंडा होने दें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें डालें जीरा, सौंफ और जब ये सब चटकने लगे तो धनिया पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर, बेसन, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला और नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिला लें। बहनों, पकी हुई मूंग दाल को मैश करके कढ़ाई में डालें और अच्छी तरह इसे मिला लें और ये जो मिश्रण है इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएं और इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए। अब इस भरावन को ठंडा होने के लिए भी थोड़ी देर रखें। कचौड़ी बनाने के लिए आटे के छोटे छोटे लोई बना लें और प्रत्येक लोई को बेलकर पतली पूरी बना लें। प्रत्येक पूरी के बीच में 1/2 बड़े चम्मच भरावन रखें और इसके किनारों को अच्छी तरह बंद करके सील कर दें। अब बहनों, एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इस कचौड़ी को सुनहरा भूरा होने तक तल लें। तलने के बाद परोसने के लिए मूंग दाल कचौड़ी को आलू की सब्जी या दही के साथ गर्मा गर्म परोसें। बहनों, अगर आप इस कचौड़ी को और अधिक खस्ता बनाना चाहती हैं तो इस आटे में थोड़ी सी सूजी भी आप मिला सकती हैं। तो बहनों, ये जब बच्चे खाएंगे तो वाह वाह कर उठेंगे और साथ ही शाम के नाश्ते में या रात के डिनर में भी ये कचौड़ियाँ हमारे स्वाद को दुगना कर देती हैं।

0: बहनों, बस इसी स्वाद के बातचीत के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी रेडियो सखी कल्याणी को दीजिए विदा। मानसून का आनंद लें, मुस्कुराते रहें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जोहार, नमस्कार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और इस समय आप सुन रहे हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को।
1: युवा जोश, नई सोच और नई उड़ान, तैयार हो जाइए क्योंकि आज शाम युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होने वाला है बेहद खास। आज शाम सुनिए विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर एक बेहद खास बातचीत। महसूस कीजिए शिकागो में गूंजी स्वामी विवेकानंद जी की वो ऐतिहासिक दहाड़। साथ ही जानिए बैंकिंग सेक्टर में युवाओं के लिए शानदार करियर के मौके। तो कुछ नया सीखने और जानने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे यानी मानव घोष के साथ। आज शाम 5:02 पर सुनिए युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन का ठीक 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और ठीक 1:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAP

0: ये के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency to block their finances, impose embargoes on arms sales and seize their assets. The government has issued notice to Telegram over widespread piracy reports. According to official sources, the government has directed Telegram to take immediate measures against pirated films and OTT content. Sources further said that the platform has been asked to submit the action taken report within 15 days. The bilateral investment agreement BIA between India and Israel came into force today. The agreement was signed in September last year in New Delhi. The finance ministry said the BIA is a landmark step towards strengthening bilateral economic relations and ensuring a secure and predictable investment climate. The ministry noted that the BIA is expected to contribute to increased cross-border investment activity

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिम सिंहभूम का किया दौरा। जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के प्रभाव से देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और कृषि सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

0: बैठक में कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन और किसानों को राहत देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: राज्य में मॉनसून पर अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है। रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार प्रशांत महासागर के सतही तापमान में बदलाव यानी अल नीनो के कारण दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कमजोर पड़ रहा है।
2: देखिए, प्रशांत महासागर में जो सतही समुद्री टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जो चेंजेस आता है पूर्वी या पश्चिमी भाग में, उस टेम्परेचर चेंजेस को हम लोग अल नीनो के नाम जानते हैं। तो इसके होने से ये होता है कि भारतीय मॉनसून कमजोर होता है, से अधिकतर खेती होती है, उसी पे हम लोग ज्यादा निर्भर है, बारिश में अनियमितता देखने को मिलती है।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। यह डिजिटल पहल महिलाओं को निडर होकर अपनी आवाज उठाने की सुविधा देती है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने राज्य के प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद एक ही अधिकारी को सौंपे जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का विकास और जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
3: आज के समय डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। काम को जितना विकेंद्रीकरण करके आप अकाउंटेबल लोगों को, पदाधिकारियों को बैठा करके आप रिजल्ट निकालिए, वैसे समय में आप ये मर्ज करके इस पूरे व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं और मुझे लगता है इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है झारखंड की परिस्थिति में, और आज नहीं तो कल इनको रोल बैक करना ही होगा। इसलिए पुनर्विचार करें और नए नए पदों में नए नए पदाधिकारी, जेपीएससी यूपीएससी से जो लोग आए हैं, जो भी वीडीओसी उनको वहां दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बहाली करिए और उनको काम करने में।
0: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नवनियुक्त महाधिवक्ता रोहिताशे रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कानूनी मामलों की प्रभावी डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए जल्द ही अपग्रेड विधि पोर्टल 2.0 लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी जी को महान देशभक्त और दार्शनिक बताते हुए कहा कि उनके प्रेरणादायक विचार और आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का मार्गदर्शन करती रहेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद एसएसपी से लिखित शिकायत पर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है।

0: दोनों बातों के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके गलत कारनामों को हम लोग बोल रहे हैं, उन तमाम चीजों से बाज आए। टुल्लू अगर ये समझता है जो किसी क्रिमिनल को लगा कर हम लोगों को चुप करवा देगा, जब वो खुद नहीं बोल पाता है, चीजों की जवाब नहीं दे पाती है, तो क्रिमिनल को आगे करते हैं।
1: झारखंड राज्य खाद्य आयोग के प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने पश्चिमी सिंहभूम के दो दिवसीय दौरे के बाद कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित सभी जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन दिया जाए।
2: जांच में मैंने पाया कि उन लोगों का जो आरोप था वो सही है। मैंने यहाँ के एडिशनल कलेक्टर जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं उनको मैंने ये निर्देश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान करके और जितने दिनों का राशन नहीं मिला है सवा गुना मुआवजा के साथ उसे राशन उपलब्ध कराना है।
1: चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, नवनिर्मित बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीआरएम ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और साफ सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए।
3: यहाँ पे आवागमन के लिए लाइन की कमी है, यहाँ पर लाइनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे और लाइन दी जा सकती है या कहाँ पे लाइन ऐसे दी जाए ताकि गाड़ी जल्दी आया जाए, उसके लिए एक सर्वे किया था हमने, यार्ड में भी दे गए थे, यह उपयोग किया जाए तो पैसेंजर के लिए जो सुविधा है।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र का विस्तार देश की आत्मनिर्भरता की नींव है। 65वीं रांची जिला सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 15 बालक वर्ग का खिताब मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके ने जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में कांके की टीम ने सेंट जॉन्स स्कूल को 4-3 से पराजित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिमी सिंहभूम का किया दौरा। जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:21 हुए हैं और आप इस समय सुन रहे हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को।

0: युवा जोश, नई सोच और नई उड़ान। तैयार हो जाइए क्योंकि आज शाम युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होने वाला है बेहद खास। आज शाम सुनिए विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर एक बेहद खास बातचीत। महसूस कीजिए शिकागो में गूंजी स्वामी विवेकानंद जी की वो ऐतिहासिक दहाड़। साथ ही जानिए बैंकिंग सेक्टर में युवाओं के लिए शानदार करियर के मौके। तो कुछ नया सीखने और जानने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे यानी मानव घोष के साथ। आज शाम 5:02 पर सुनिए युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर के 102.4 MHz पर।
1: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान,
1: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
1: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर। हेलो डॉक्टर, आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ हेलो डॉक्टर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

1942 अ लव स्टोरी, इसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में जावेद अख्तर ने गीत लिखा और धुन बनाई आर डी बर्मन ने। और अब अगला गाना आशिकी 2 फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं, अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल ने गीत लिखा है और धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब इस कार्यक्रम के लिए वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं

0: जहां लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहां की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है। जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर

0: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे।
1: अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और अब कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, श्रेया घोषाल और तूची रैना की आवाजों में। समीर अंजान और प्रिया पंचाल हैं गीतकार और संगीतकार हैं सचिन जिगर। फिल्म का नाम शोर इन द सिटी।

जीनियस फिल्म का ये गाना था अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कुमार थे गीतकार और संगीतकार थे हिमेश रेशमिया। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर ने गीत लिखा और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

0: साजन फिल्म का ये गाना था, अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत समीर ने लिखा और धुन बनाई नदीम श्रवण ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, दोपहर के दो।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport. Home Ministry designates 23 Pakistan-based individuals as terrorists under UAPA. Centre issues notice to Telegram messaging app over widespread piracy reports. Asked to submit report within 15 days. Bilateral investment agreement between India and Israel comes into force today. IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during the next 4 days. And in men's cricket, India to face host England in second T20 international in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi dedicated, inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees at Balotra, Rajasthan. These projects spanned multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister dedicated India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Speaking on the occasion, Mr. Modi said this refinery will provide employment to thousands of young people.
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: Prime Minister Modi also laid the foundation stone for phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. Under phase 2, a 41-kilometer north-south metro corridor will be developed from Prahladpura to Todimur, connecting the industrial and residential areas of Sitapura and Vishwakarma industrial area through 36 stations. We now take you live to the Prime Minister's address in Balotra.
2: बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है साथियों। राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है।
1: Earlier, Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that no matter how big or unexpected the challenge may be, the new India neither retreats from its resolve nor slows down its pace. The Prime Minister also inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. In a major boost to the aviation sector, with a particular focus on regional connectivity, Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. This marks a significant leap forward in the country's civil aviation landscape and will further advance the vision of Ule Desh Ka Aam Nagrik. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है।

0: भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए

टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: युवा जोश, नई सोच और नई उड़ान। तैयार हो जाइए क्योंकि आज शाम युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होने वाला है बेहद खास। आज शाम सुनिए विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर एक बेहद खास बातचीत। महसूस कीजिए शिकागो में गूंजी स्वामी विवेकानंद जी की वो ऐतिहासिक दहाड़। साथ ही जानिए बैंकिंग सेक्टर में युवाओं के लिए शानदार करियर के मौके। तो कुछ नया सीखने और जानने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे यानी मानव घोष के साथ। आज शाम 5:02 पर सुनिए युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर के 102.4 MHz पर,
1: जहां लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहां की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है। जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति रविवार 5 जुलाई 2026 को 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर सुना जा सकता है।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आँखियों के झरोखों से। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हेमलता की आवाज़ में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और अब कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए। गुलजार ने गीत लिखा है, धुन बनाई है भूपेन हजारिका ने और फिल्म का नाम है रुदाली।

सत्यमेव जयते फिल्म का ये गाना भी आपने सुना एस जानकी और बप्पी लाहिरी की आवाज़ों में। एस फारूक ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी बप्पी लाहिरी ने।

आंधी फिल्म का ये गाना था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत गुलजार ने लिखा और धुन बनाई आर डी बर्मन ने। और श्रोता, ऐसे गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। इस समय दोपहर के ठीक 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ठीक 3 बजे सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित न्यू इंडिया समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।

0: मेरे पास कुल गार्ड्स की संख्या 16 है और 3 गाड़ियां थी। मैंने पत्र लिखा डीजीपी को 2 महीने पहले, यानी कि लगभग 21 अप्रैल को, कि 3 गाड़ियों से 16 जवान को बैठाना उचित नहीं होगा। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी यह कभी अच्छी बात नहीं।
1: इधर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के मंत्रियों को ड्रॉप होने का डर है।
2: विषय है कि राज्यसभा के बाद कांग्रेस में मंत्रियों को रिसफल करने की चर्चा चल रही है, दाव पेच का खेल हो रहा है। इनके संबंध न प्रभारी से अच्छे हैं, न अध्यक्ष से अच्छे हैं। इनको ड्रॉप होने का ज्यादा चांस है। स्वास्थ्य मंत्री को भी ड्रॉप होने का ज्यादा चांस है। हो सकता है दीपिका जी को भी हटा दिया जाए। बंधु की बेटी धर्म के आधार पर बच सकती है, लेकिन ये 3 लोगों को जाने का चांस है।
1: भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने राज्य के प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद एक ही अधिकारी को सौंपे जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का विकास और जनता की समस्याओं से कोई लेन देन नहीं है। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नव नियुक्त महाधिवक्ता रोहिताशय रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। धनबाद के निरसा विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद SSP से लिखित शिकायत कर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है। गढ़वा जिला नियोजनालय द्वारा आज जिला मुख्यालय स्थित गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें शामिल विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा 139 युवक युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया। इससे पूर्व रोजगार मेले का उद्घाटन उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने संयुक्त रूप से किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का राज्य।
1: छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।

तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि BIA अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्याय शास्त्र को भी दर्शाता है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हेवेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के शिष्टमंडल शामिल थे। 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश के शाश्वत ज्ञान को विश्व तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यू इंडिया समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:05 हुए हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

युवा जोश, नई सोच और नई उड़ान। तैयार हो जाइए क्योंकि आज शाम युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होने वाला है बेहद खास। आज शाम सुनिए विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर एक बेहद खास बातचीत। महसूस कीजिए शिकागो में गूंजी स्वामी विवेकानंद जी की वो ऐतिहासिक दहाड़। साथ ही जानिए बैंकिंग सेक्टर में युवाओं के लिए शानदार करियर के मौके। तो कुछ नया सीखने और जानने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे यानी मानव घोष के साथ। आज शाम 5:02 पर सुनिए युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर के 102.4 MHz पर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में ये गजल।

अनूप जलोटा की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गज़ल, और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:15 हुए हैं। झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं वकील ताती और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत।
1: चल भाजा जोनहारी भाजा, चल भाजा कालोई भाजा, उगती बोहारी आ चखनाटा, हमरा ती बोहारी।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आज के कलाकार हैं वकील ताती और साथी। आइए सुनते हैं कुरमाली में ये अगली प्रस्तुति।
1: जिया लो तेरे जोत कोरी

0: वकील ताती और साथियों के स्वर में गाए कुरमाली लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। दिन के 3:30 हुए हैं। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में। पिघलते फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
2: युवा जोश, नई सोच और नई उड़ान, तैयार हो जाइए क्योंकि आज शाम युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होने वाला है बेहद खास। आज शाम सुनिए विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर एक बेहद खास बातचीत। महसूस कीजिए शिकागो में गूंजी स्वामी विवेकानंद जी की वो ऐतिहासिक दहाड़। साथ ही जानिए बैंकिंग सेक्टर में युवाओं के लिए शानदार करियर के मौके। तो कुछ नया सीखने और जानने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे यानी मानव घोष के साथ। आज शाम 5:02 पर सुनिए युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।

अब शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पहाड़ी ठुमरी। कलाकार हैं विदुषी गिरिजा देवी और पंडित जगदीश प्रसाद।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी ठुमरी। आज के कलाकार थे विदुषी गिरिजा देवी और पंडित जगदीश प्रसाद। और इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 3:45 हो रहे हैं और अब सुनिएगा कार्यक्रम, लोकगीतों का कार्यक्रम सुनिए बस थोड़ी ही देर में।
1: कार्यक्रम लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं गणेश पंडित और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज के कलाकार हैं गणेश पंडित और साथी। आइए सुनते हैं भोजपुरी में ये अगली प्रस्तुति।

गणेश पंडित और साथियों के स्वर में गाए भोजपुरी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के राज्य केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश, कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसकी खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित BLO को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि BLO के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य के समय पूरा हो सके। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। खूंटी स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: युवा जोश, नई सोच और नई उड़ान, तैयार हो जाइए क्योंकि आज शाम युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होने वाला है बेहद खास। आज शाम सुनिए विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर एक बेहद खास बातचीत। महसूस कीजिए शिकागो में गूंजी स्वामी विवेकानंद जी की वो ऐतिहासिक दहाड़। साथ ही जानिए बैंकिंग सेक्टर में युवाओं के लिए शानदार करियर के मौके। तो कुछ नया सीखने और जानने के लिए जुड़ना न भूले मेरे यानी मानव घोष के साथ। आज शाम 5:02 पर सुनिए युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में सुने गुलाम अली की आवाज में चंद गजलें।

0: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 4:30 होने को हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
3: युवा जोश, नई सोच और नई उड़ान, तैयार हो जाइए क्योंकि आज शाम युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होने वाला है बेहद खास। आज शाम सुनिए विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका पर एक बेहद खास बातचीत। महसूस कीजिए शिकागो में गूंजी स्वामी विवेकानंद जी की वो ऐतिहासिक दहाड़। साथ ही जानिए बैंकिंग सेक्टर में युवाओं के लिए शानदार करियर के मौके। तो कुछ नया सीखने और जानने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे यानी मानव घोष के साथ। आज शाम 5:02 पर सुनिए युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर के 102.4 MHz पर।
0: शाम के 4:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हिमेश रेशमिया के संगीत से सजा समीर का लिखा गीत हमने आपको सुनवाया, के अलीशा चिनॉय और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म थी एतराज़। अगले गीत में अलीशा चिनॉय का साथ दिया है सोनू निगम ने।

बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे अलीशा चिनॉय, सोनू निगम और साथियों ने गाया था। संगीत रचना थी संदीप चौटा की।

आशिक बनाया आपने, इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आपने सुना हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में। समीर थे शब्दकार, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

हिमेश रेशमिया के संगीत से सजा यह गीत चुप चुप के फिल्म से आप सुन रहे थे, जिसे गाया था कुणाल गांजावाला, सोनू निगम, आकृति कक्कड़ और साथियों ने। गीत रचना समीर की थी।

समीर का लिखा एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आदेश श्रीवास्तव का संगीतबद्ध किया हुआ, अदनान सामी, सुखविंदर सिंह, फाल्गुनी पाठक और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म है दीवानापन।

अदनान सामी, सुखविंदर सिंह, फाल्गुनी पाठक और साथियों के गाए दीवानापन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी इसी सभा में रात 8 बजे से भी। यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.1।

0: 4 MHz पर शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार मुख्यांश सुनिएगा।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित आधार सेवा केंद्रों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के धुरमाडी गांव के पास तेज रफ्तार वाहन और बाइक की टक्कर में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग एक घंटे तक सड़क जाम कर दी। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। खूंटी स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं। हमारे केंद्र से अब सुनिए युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार, यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और आज के इस सफर को और भी शानदार बनाने के लिए मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त मानव घोष। मेरे युवा साथियों, कभी ना कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये महज कुछ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो सदियों से युवाओं में जोश भरता आ रहा है। ये मंत्र उसी युवा व्यक्तित्व के हैं जिसने सिर्फ 30 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया को भारतीय ज्ञान और संस्कृति के आगे नतमस्तक कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, साल 1893, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। पश्चिम देशों की नजर में भारत केवल गरीबों और अनपढ़ों का देश था। ऐसे माहौल में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। सभागार में दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान महंगे परिधान पहने बैठे थे और उन सब के बीच एक साधारण से गेरुआ वस्त्र में बैठा है एक युवा सन्यासी। जब उस

युवा सन्यासी का नाम पुकारा गया तो उसके हाथ में कोई लिखी हुई पर्ची नहीं थी। वह मंच पर गए, गहरी सांस ली और बिना किसी बनावट के सीधे दिल से अपने भाषण की शुरुआत की, महज 5 शब्दों में। अमेरिका के बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मानो जादू सा हो गया। वह महज एक वाक्य नहीं था, वह उस भारतीय संस्कृति की आवाज थी जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है। विशाल सभागार में मौजूद 7,000 लोगों ने अपने स्थान पर खड़े होकर उन्हें जो सम्मान दिया वह इतिहास बन गया और लगातार 2 मिनट तक सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। उन्होंने वहां किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि जैसे हर नदी आखिरकार समुद्र में मिलती है, वैसे ही हर धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचता है। उनका यह संबोधन केवल भाषण नहीं था, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का विश्व मंच पर गौरवपूर्ण परिचय था। उस दिन अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा कि विवेकानंद को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे ज्ञानी देश में हमें अपने धर्म प्रचारक भेजकर उन्हें सिखाने की कोशिश करना ही कितनी बड़ी बेवकूफी है। आज हम युवा अक्सर छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं, है ना? किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली या डिजिटल दुनिया में लोगों ने हमारी सराहना नहीं की तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। मुझे लोहे जैसे मजबूत इरादों और फौलाद सी नसों वाले युवा चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कोई बीती हुई कहानी नहीं है, वे आज भी हमारे और आपके अंदर जिंदा एक चिंगारी है। आज हमें विवेकानंद जी के आत्मविश्वास, ईमानदारी, सेवा, राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, निरंतर परिश्रमों के विचारों को जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज खुद से एक वादा करते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए कभी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और इसी लक्ष्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हुए सुनते हैं एक शानदार और जोश से भरा गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने। गीतकार है जावेद अख्तर और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने। दोस्तों, जब हम लक्ष्य की बात कर ही रहे हैं तो आइए बात करते हैं उस सबसे बड़े लक्ष्य की जो आज हर भारतीयों की आंखों में है, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य। आज से ठीक 21 साल बाद जब हमारा देश आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तो वह कैसा होगा, क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, विकसित भारत का लक्ष्य किसी चमत्कार से नहीं बल्कि युवाओं के नवाचार, तकनीक और अथक परिश्रम से पूरा होगा, क्योंकि आज का युवा ही विकसित भारत 2047 की नींव है। और दोस्तों, इसी विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाले एक ऐसे ही ऊर्जावान युवा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बोकारो से हेमंत कुमार आयुष। तो आइए बिना देरी के चलते हैं इस खास बातचीत की ओर और सुनते हैं हेमंत कुमार आयुष के विचार।

0: सबसे पहले हेमंत कुमार आयुष, आपका युववाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे श्रोताओं के साथ अपना संक्षिप्त परिचय साझा कीजिए और उन्हें ये भी बताइए कि 2047 में आपके सपनों का विकसित भारत कैसा होना चाहिए।
1: सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं

0: को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आयुष, बोकारो झारखंड से, और वर्तमान में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। और मुझे युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 एवं 2026 में अपने राज्य झारखंड का राष्ट्रीय स्तर पर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, या 2047 में मेरे सपनों का विकसित भारत कैसा होगा, तो जब हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो एक ऐसे भारत का दृश्य दिखाई पड़ता है जो केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से भी उन्नत हो। एक ऐसा भारत जहाँ जाति और क्षेत्रीय गौरव से परे लोगों में राष्ट्रीय गौरव की प्राथमिकता हो। एक ऐसा भारत जहाँ की आधारभूत संरचनाएं भारत की गौरवमयी संस्कृति, इतिहास एवं शिल्प कलाओं को दर्शाती हो। एक सबल, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत।
1: क्या बात है, आपने विकसित भारत की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश की। अब हम अगर युवाओं की बात करें तो आपको क्या लगता है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में हम युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
0: स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा दो और मैं भारत की दशा एवं दिशा दोनों बदल दूंगा। यानी स्वामी विवेकानंद भी युवाओं की सामर्थ्यता को समझते थे। और जब हम भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो भारत एक डेमोग्राफिक एडवांटेज की स्थिति में खड़ा है, जहाँ पे 65% की आबादी युवाओं की है, 35 वर्ष से कम आयु की है। यानी यह या एक ऐतिहासिक पल है जब हम युवा बल जो है उसे भारत को विकसित बनाने में उपयोग कर सकते हैं। जब युवा नवाचार से कौशल विकास तक, समाज में सकारात्मक बदलाव से लेकर लोकतंत्र में जागरूक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व तय करे, तो विकसित भारत केवल संकल्प नहीं सिद्धि में परिवर्तित हो सकता है।
1: बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और मैं सच कहूँ तो हमारी यही छोटी छोटी कोशिशें आगे चलकर एक बड़ा बदलाव लाती है। आज भारत तेजी से डिजिटल बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल रही है। ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार युवा किस प्रकार इस नई तकनीक का इस्तेमाल भारत को विकसित बनाने में कर सकता है।
0: शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयादि याति पात्रत्वम्, पात्रत्वातो धर्मापनोति धनात् धर्मम् तथाचकम्। अर्थात विद्या से विनम्रता, विनम्रता से पात्रता, पात्रता से समृद्धि और समृद्धि से सुख प्राप्त होता है। जब हम सोशल मीडिया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका उपयोग भी हमें इन्हीं विचारों के साथ करना चाहिए। और आज की दुनिया केवल इंफॉर्मेशन एज की नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंशियल एज में प्रवेश कर रही है, जहाँ पर जो समाज ज्ञान का सृजन करेगा, डेटा का सही उपयोग करेगा और विश्वसनीय जानकारी देगा, वही भविष्य का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए भारत के युवाओं की भूमिका भी केवल टेक्नोलॉजी यूजर्स बनने की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी क्रिएटर और रेस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनने की भी है। उदाहरण के लिए हम यह समझ सकते हैं कि यदि AI का उपयोग भारतीय भाषाओं में शिक्षा को सुलभ बनाने में, अथवा किसान को बेहतर सलाह देने में, जानकारी देने में, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में, छोटे व्यवसायों के उत्पादों को घर घर तक पहुंचाने में उपयोग हो, तो करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
1: एकदम सटीक कहा आपने, तकनीक के सही इस्तेमाल से एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती। आपके अनुसार वे कौन सी चुनौतियां हैं जो विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है?
0: मेरे विचार से विकसित भारत की सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी नहीं बल्कि सही मानसिकता और विजन की चुनौती है। आज युवाओं के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी है, जैसे स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास की कमी। दूसरा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जानकारी तो बहुत है परंतु जानकारी की सही जानकारी की पहचान और आलोचना भी बहुत आवश्यक है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मेंटल प्रेशर, शॉर्ट टर्म थिंकिंग जैसे भी समस्याएं युवाओं को बहुत परेशान करती है। इसके साथ साथ हम कई समस्याएं आज के समय में देखते हैं, जैसे सामाजिक ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार एवं पर्यावरण संकट। तो इन सभी समस्याओं को अगर युवा अगर ठान ले कि हमें दूर करना है तो बिल्कुल विकसित भारत बन सकता है। और मैं एक संदेश भी युवाओं को देना चाहता हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी पर मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर

0: कसे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें और एक ऐसे भारत का नव निर्माण करें जो अपने सांस्कृतिक विरासतों पे चलते हुए विकास आरूढ़ हो।
1: बहुत ही शानदार और गहरी बातें आपने कही। चुनौतियां चाहे जितनी भी हो, यदि युवा संकल्प के साथ आगे बढ़े तो विकसित भारत 2047 का सपना अवश्य साकार होगा। हेमंत, आपके अनुभव और सुझाव निश्चित रूप से युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, ये थे बोकारो से हेमंत कुमार आयुष। इनकी बातों से तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि विकसित भारत महज कोई सरकारी नारा नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है जो हम सभी भारतवासियों के कंधों पर है। आपका हर छोटा सा प्रयास उस महान भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर एक नवीन भारत की नींव रखें। आइए इसी सकारात्मक सोच और नए संकल्प के साथ सुनते हैं ये प्रेरणादायक गीत।

0: आप सुन रहे थे हम हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश ने, गीतकार है प्रेम धवन और इसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने। मेरे युवा साथियों, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की बात कर चुके हैं, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की बात भी हमने की, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने और अपने परिवार का सहारा बनने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, और वह नींव है एक सुरक्षित रोजगार। तो चलिए आज हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जो भारत के अर्थव्यवस्था की धड़कन है, यानी हमारा बैंकिंग क्षेत्र। बैंकिंग सुनकर अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? बैंक की नौकरी मतलब वही सुबह 10 बजे जाना, काउंटर के पीछे बैठना और शाम तक बस पैसा या कागजात गिनना है ना? लेकिन दोस्तों, यह बहुत पुरानी तस्वीर है। डिजिटल भारत के इस नए दौर में बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह से बदल चुका है। आज का बैंक सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं कर रहा, बल्कि यह तकनीक और नवाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। अगर हमारी रुचि या आपकी रुचि कंप्यूटर और नई तकनीक में है, तो आप सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों जैसे विकल्प आपके पास बैंकिंग क्षेत्र में मौजूद है। इसके अलावा आंकड़ा विश्लेषण, मार्केटिंग और राजभाषा अधिकारी जैसे अनगिनत विकल्प भी आज बैंकिंग क्षेत्र में उभर रहे हैं। आइए सुनते हैं जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग की विद्यार्थी वर्षा चौधरी ने बैंकिंग क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर क्या कहा है।
1: नमस्कार, मैं वर्षा चौधरी करीम सिटी कॉलेज की अर्थशास्त्र की छात्र हूँ। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है, और जब युवाओं को सही दिशा में रोजगार में अवसर मिलते हैं, तभी देश आर्थिक रूप से सक्षम बनता है। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र आज के युवाओं के लिए सबसे तेजी से बढ़ते हुए और भरोसेमंद करियर विकल्पों में से एक साबित हुआ है। आज का युवा केवल नौकरी नहीं बल्कि ऐसा करियर चाहता है जो उसे आर्थिक रूप से सुरक्षा, सम्मान, सीखने के अवसर और भविष्य में आगे बढ़ने का मंच दे। बैंकिंग इन सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है। बैंकिंग क्षेत्र युवाओं को स्थायी रोजगार, आकर्षक वेतन और निरर्थक कौशल विकास प्रदान करती है। डिजिटल तकनीक में बढ़ते उपयोग ने बैंकिंग के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र में विस्तार रूप से रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए। आज युवा क्लर्क, रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर, डिजिटल बैंकिंग जैसे अनेक पदों पर अपना भविष्य बनाते हैं। बैंकिंग क्षेत्र केवल रोजगार ही नहीं देता, बल्कि युवाओं को निर्णय लेने की क्षमता, ग्राहक सेवा और नई तकनीकों के साथ काम करने का अनुभव भी प्रदान करते हैं। यूनिक बदलते समय के साथ सक्षम बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकिंग में कार्य करने वाला प्रत्येक युवा देश की आर्थिक विकास का भागीदार बनता है। जिन युवाओं के भीतर ईमानदारी, जिम्मेदारी, सीखने की इच्छा और लोगों की सेवा करने का भाव है, उनके लिए बैंकिंग सबसे अच्छा करियर साबित हो सकता है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज का युवा केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे करीम सिटी कॉलेज की वर्षा चौधरी को। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल, आखिर बैंकिंग क्षेत्र में हमारा चयन होगा कैसे? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी पारदर्शिता। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान हर साल हजारों पदों पर भर्तियां निकालते हैं। तो इंतजार कैसा? अगर आप में अनुशासन है, आप सही रणनीति और समय प्रबंधन के साथ महज 6 से 8 महीने की एकाग्रता के साथ अगर पढ़ाई कर लेते हैं, तो यकीन मानिए एक बेहद सुरक्षित, सम्मानजनक और शानदार भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो फिर सोचना कैसा? आज ही बैंकिंग परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को गहराई से समझे, पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अवसर हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना होता है।

आइए अब नजर डालते हैं देश की ताजा खबरों पर। 2 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के दौरान आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। 3 जुलाई को युवा मामलों के विभाग द्वारा नई दिल्ली में उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं

को में कौशल विकास के नए अवसर तैयार करना है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त मानव घोष आपसे लेता हूं विदा। सुनते रहिए

0: यू आर श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, प्रसारण हुआ एफ एम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से,
1: जहां लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहां की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है। जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन EIR ऐप पर सुना जा सकता है।
0: इस समय शाम के 5:31 हुए हैं। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है श्रमिक साथियों का कार्यक्रम कल कारखाने।

शनिवार की इस प्यारी सी शाम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को रश्मि तिवारी का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन एक स्वस्थ तनाव मुक्त जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने, रिश्तों को मजबूत करने और करियर में लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन में मदद करता है। श्रोता साथी, काम और जिंदगी में संतुलन क्यों जरूरी है, आइए बात कर लेते हैं। तनाव में कमी, ये आपके कार्य संबंधी तनाव को कम तो करता ही है, साथ ही ये आपको थकान और उदासीनता से भी बचाता है। उत्पादकता में वृद्धि, जब आप तरोताजा और संतुष्ट होते हैं तो आप काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। बेहतर रिश्ते, परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालने से आपके व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं और आपको भावनात्मक सहारा मिलता है। स्वस्थ जीवन शैली, आप अपने शौक, व्यायाम और खान पान के लिए समय निकाल पाते हैं, जो आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है। श्रोताओं, संतुलन बनाने के लिए काम और घर के बीच की रेखा खींचें। काम के घंटों के बाद ऑफिस के ईमेल या फोन कॉल से दूरी बनाए न सकने। अपने दिल को सबसे महत्वपूर्ण कार्य की सूची बनाएं, ना कहना सीखें ताकि आपके ऊपर काम का बोझ न पड़े। काम के बीच में छोटा ब्रेक लें, कुछ न करने का अभ्यास करें और अपने दिमाग को आराम दें। यदि आप अत्यधिक दबाव में हैं तो अपने मैनेजर से लचीले समय या अन्य विकल्पों के बारे में बात करने में जरा भी संकोच न करें। इस तरह से श्रोताओं, आपको अपने कार्यस्थल के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए बेहतर व्यक्तिगत संबंध विकसित करने में मदद मिल सकती है।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत की बोल लिखे थे अनजान ने और इसे संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। और श्रोता आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कुछ और जानकारियों के साथ और जानकारी हासिल करते हैं भेंटवार्ता के जरिए। विषय है ट्रामा मैनेजमेंट एक जानकारी। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर असीम चौधरी और उनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार राय। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।

0: एक्सीडेंट के वजह से या तो कोई वायलेंस या नेचुरल कैलेमिटीज जस्ट लाइक मैंने आपका अर्थक्वेक हुआ, इस तरह का
1: अच्छा,
0: कुछ भी
1: मतलब
0: ले सकते
1: किसी
0: हैं
1: भी
0: सर।
1: कोई दुर्घटना, सड़क
0: सड़क
1: दुर्घटना या
0: दुर्घटना
1: कार्यस्थल में दुर्घटना या किसी के द्वारा, हिंसा के द्वारा
0: हिंसा के
1: या कोई
0: द्वारा
1: जो आपने बताया नेचुरल प्राकृतिक आपदा के चलते
0: प्राकृतिक
1: अगर कोई चोट लगे, शारीरिक आघात को ही हम लोग ट्रॉमा
0: ट्रॉमा
1: कहेंगे।
0: बोलते हैं,
1: जी
0: चोट
1: जी
0: बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, तो जो है मान लिया किसी को इस तरह की दुर्घटना हो गई, हम लोग ज्यादा चूंकि आज के समय में कहावत हम लोग सुने हैं जान है तो जहान है, सड़क की भी जो यात्रा काफी मतलब सुरक्षित होनी चाहिए और सड़कों पे ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हुए हम लोग सुनते हैं, तो वैसे तो ट्रॉमा के आपने बताया काफी व्यापक आयाम है, लेकिन अगर हम लोग सड़क पर, अगर इसको सड़क दुर्घटना पर केंद्रित करें, तो किसी को अगर इस तरह किसी के साथ ऐसी दुर्घटना, पहली स्थिति तो है कि भगवान न करे ऐसी ऐसा किसी के साथ हो और आपकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति हो जाए, ट्रॉमा की स्थिति, किसी को चोट लग जाए, तो हॉस्पिटल ले जाने के पहले उस व्यक्ति को और जो उसको सहायता करने वाले हैं, जो आसपास लोग जमा होते हैं, उन्हें क्या करनी चाहिए? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन सावधानियां क्या है?
0: राजेश जी, ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि भीड़ काफ़ी हो जाती है कोई एक्सीडेंट के बाद,
1: जी,
0: लेकिन हम लोग को प्राइमरी जो पहले बेसिक चीज़ जो करना होता है कि भीड़ को हटाना होता है। उसमें जो भी कोई भी आदमी, जो भी इनिशिएटिव कोई भी आदमी
1: जी
0: ले
1: कोई भी
0: सकते
1: उसमें
0: हैं,
1: पहल ले सकता है। जी
0: तो पहल जो लेते हैं उनको पहले पहल ये करना चाहिए कि बॉडी को सीधा लेटाना चाहिए,
1: अच्छा, जो
0: ठीक है
1: दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति उसको
0: जी।
1: सीधा करना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन उनको थोड़ा एक्टिव भी रहने पड़ेगा इस मामले में। और हमारे बेसिक प्रिंसिपल है कि तीन ये में चलता है, ए बी सी, एयरवेज,
1: जी अच्छा, आप लोग का एक मूल
0: एयरवे,
1: मंत्र है ABC।
0: ए बी सी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन।
1: अच्छा,
0: तो
1: एयरवेज, ब्रीदिंग एंड
0: सर्कुलेशन,
1: सर्कुलेशन।
0: लेकिन ये सब कुछ तो हम रोड पे नहीं कर सकते हैं।
1: जी, निश्चित रूप
0: तो
1: से।
0: बेसिक चीज जो है, पहला काम है, जो भी इनिशिएटिव लेते हैं उनको उसके मुंह को क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट्स के वजह से उसके मुंह के अंदर मिट्टी है, जाके उसके एयरवे को ब्लॉक कर देता है।
1: अच्छा, तो उसके मुंह को साफ करना
0: मुंह
1: चाहिए।
0: को साफ कर देना चाहिए और बॉडी को सही पोजीशन में रखना चाहिए, इसलिए कि ज़्यादातर पॉलीट्रॉमा केसेस में होता कि हेड इंजुरी है, साथ में
1: अच्छा, तो
0: सर
1: सही पोजीशन से डॉक्टर साहब आपका क्या अभिप्राय है?
0: पीठ के बल पे लेटाना चाहिए,
1: अच्छा
0: सर को सीधा रखना चाहिए, और आपका जो उनका जो गर्दन का हड्डी है इसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता है कि एक्सीडेंट के बाद कहाँ का क्या इंजरी है। लेकिन ये सब वाइटल पार्ट है, ये सब में चोट लगने से किसी भी आदमी को अगर तुरंत मौत हो सकता है।
1: जी, मतलब जो है जो शरीर के जो वाइटल, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जो
0: हाँ।
1: आपने बताया कि माथा और जो सर्वाइकल रीजन, जो गर्दन
0: सर्वाइकल
1: वाला
0: रीजन
1: हिस्सा,
0: हिस्सा
1: तो इन सबको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना
0: ध्यान
1: चाहिए।
0: देना चाहिए। और तुरंत कोई भी गाड़ी, जैसे एम्बुलेंस मिल जाए तो सबसे अच्छा, जैसे हमारे जमशेदपुर में जर्मा का फैसिलिटी है,
1: जी, हाँ, जर्मा वालों ने एम्बुलेंस प्रारंभ किया है।
0: जर्मा वाला ने, तो इसके वो लोग को तुरंत कॉल करके बुलाना चाहिए।
1: जी, ठीक है,
0: तो
1: उस तरह के मतलब जहाँ पे सुविधाएं मौजूद हों
0: हाँ
1: तो एम्बुलेंस से ही ले जाना नजदीकी हॉस्पिटल।
0: हाँ लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि तुरंत उसको जो शिफ्ट किया जाए बॉडी को,
1: जी
0: तो उस समय जैसे अगर दो तीन आदमी उनके बॉडी पकड़े हैं, तो एक आदमी को विशेष करके उसका सर और गर्दन को सही से पकड़ के शिफ्ट करना चाहिए कि
1: अच्छा, मतलब
0: गर्दन में किसी
1: उन्हें
0: तरह का ये ना हो
1: भार न पड़े,
0: बड़ा।
1: मतलब गर्दन और माथे को सहारा देना
0: देना बहुत
1: आवश्यक
0: जरूरी
1: है,
0: है।
1: बहुत जरूरी
0: ये
1: है
0: जो भी चीज हम बोले, जो पेशेंट बेहोश पड़े हुए हैं रोड में उसके
1: उसके।
0: लिए बोले,
1: जी,
0: एक विशेष करके गंभीर रूप से
1: जो
0: जो
1: ट्रॉमा केसेस हैं।
0: ट्रॉमा केसेस है उसके लिए इमीडिएट, और उसके बाद तुरंत कोई भी हॉस्पिटल में, जो बगल आसपास के हॉस्पिटल है उसके इमरजेंसी में ले जाना चाहिए। उसके बाद वो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उसके जो
1: जी,
0: इमरजेंसी में
1: डॉक्टर साहब आपने जो
0: डॉक्टर
1: बताया कि हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर या हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ले जाना चाहिए, तो चूंकि आप खुद इमरजेंसी जैसे महत्वपूर्ण विभाग को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो वहाँ आपने क्या ऐसा अनुभव किया है या आपके अनुभव से क्या लगता है कि ट्रॉमा केसेज को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस तरह से उसको आप देखते हैं, आप क्या सावधानियां लेते हैं और उस तरह के मरीज को क्या सावधानी लेनी चाहिए अगर वो होश में है तो, और दूसरी स्थिति है तो, दोनों में?
0: अगर होश में है तो डॉक्टर्स के लिए उतना टेंशन की बात
1: जी जी
0: नहीं है
1: निश्चित रूप
0: उसमें,
1: से।
0: क्योंकि वो आपका जो फिजिकल, अगर सोचिए हाथ में चोट है या पैर में चोट है, तो डॉक्टर्स क्लिनिकली भी उसको चेक कर सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बेसिक अगर कोई पेशेंट सीवियरली इंजोर्ड है, आपका जैसे ए फीमर जंघा का हड्डी टूटा हुआ,
1: मतलब
0: इसमें आपका डेढ़ से दो

0: का खून का लॉस होता है, और अगर आपका कुल्ला का हड्डी टूटा जो पेल्विक गार्डल हम लोग बोलते हैं,
1: जी
0: इसमें 2 से 2.5 लीटर का खून का लॉस होता है,
1: जी
0: तो ये सब क्षेत्र में ये सब इस तरह का परेशानी में हम लोग तुरंत क्या करते हैं कि हम लोग एक आईवी लाइन लगा देते हैं, उसमें हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं।
1: आईवी लाइन,
0: हाँ, आईवी लाइन जो ये
1: अच्छा, जो नसों में इंटर,
0: नसों इंट्रावेनस
1: जी
0: इंजेक्शन, और साथ में हम लोग एवी की जो ब्लड के सप्लीमेंट है वो सब भी हम लोग
1: रक्त के
0: इमरजेंसी में
1: विकल्प के
0: देते
1: रूप में आप
0: हैं।
1: लोग,
0: हाँ,
1: और ब्लड बैंक वगैरह का भी इस
0: अब नहीं, उस
1: समय,
0: समय तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग ब्लड को भेजते हैं क्रॉस मैचिंग के लिए,
1: जी,
0: फिर वो ब्लड बैंक से आते हैं ब्लड क्या कितना हीमोग्लोबिन है, और क्रॉस मैच के बाद ही उसका सप्लीमेंट मैंने ये किया जाता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, मतलब अगर मरीज गंभीर रूप से घायल है, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, तो ट्रॉमा केसेज में चुनौती आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाती है।
0: भर जाती है।
1: और आप उस समय डायग्नोस्टिक में किन बातों का ख्याल रखते हैं?
0: और इसमें डायग्नोस्टिक में हम लोग जैसे, हाँ, अंदरूनी चोट को हम लोग जैसे जैसे सर का चोट है तो उसके लिए हम लोग फिर उसका एक जो GCS स्केल होता है उसको हम लोग दूसरा
1: उसका निर्धारण करते हैं, जी
0: उसका निर्धारण करते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर गर्दन, छाती, पेट, ये सबको हम लोग क्लिनिकली जांच करते हैं, फिर फार्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको भेजते हैं। जैसे सर के लिए CT स्कैन,
1: जी
0: CT ब्रेन करवाते हैं, और चेस्ट के भी चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं, कभी CT थोरक्स भी करवा सकते
1: मतलब
0: हैं।
1: शरीर का जिस हिस्सा पे चोट का आप लोगों को अंदाजा हो रहा है, अपने जो
0: हाँ,
1: आपने डायग्नोस्टिक किया उस अनुसार उसके विभिन्न उच्च स्तरीय
0: उच्च
1: जांच,
0: स्तरीय जांच कराते हैं। अगर पेट में चोट लगता है, जैसे ब्लंट इंजरी ट्रॉमा लग रहा है पेट में या छाती में, तो उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, तुरंत अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं।
1: टिप टू टो, शरीर से सिर से लेके नीचे पैर तक आप पूरे हिस्से को
0: हाँ,
1: देखते हैं।
0: और सबसे सर्वोपरि बात यह है कि कोई भी ट्रॉमा पेशेंट है उसको इमीडिएट अटेंड करना चाहिए, इमीडिएट अटेंड करना चाहिए, और आपको 1% भी चांस है तो आपको पूरा उसमें आपका पूरा टीम का सहयोग और आपका सहयोग पूरा होना
1: जी,
0: चाहिए।
1: आपने जो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कही कि इस समय पूरी दृढ़ता और पूरा डेडिकेशन के साथ ट्रॉमा केस को
0: केस को
1: देखना
0: हैंडल
1: चाहिए
0: करना
1: चिकित्सक के
0: चाहिए।
1: द्वारा भी। और जो हम लोगों ने जो बात की थी कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई इस तरह का पड़ा हुआ है, और आजकल कई जो समाज के अच्छे नागरिक हैं, गुड समैरिटन्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो कई बार लोगों को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन लोगों को पुलिस का भय रहता है तो लोग हेल्प
0: नहीं,
1: नहीं कर पाते। ऐसे में एक चिकित्सक के नाते आप वैसे गुड समैरिटन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे बड़ी बात कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है
1: जी,
0: कि कोई भी जो अच्छे आदमी जो दूसरे का मदद करते हैं इस तरह के केसेस में, या किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम कोई किसी को भी ले आते हैं, उसके ऊपर सब सर्वोपरि जान के रखे, किसी तरह का कोई केस नहीं होता। अगर कोई भी पुलिस वाला आपको इस विषय पर डरा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है।
1: उसको अप्रिसिएट, उसको प्रशंसा करने की जरूरत है, और
0: हाँ,
1: उसको इसके
0: उसको
1: लिए
0: प्रशंसा
1: धन्यवाद के भी
0: करने की
1: पात्र
0: जो,
1: हो।
0: हाँ, वो अवश्य धन्यवाद के पात्र है कि किसी के जान बचाने में उसके सर्वोपरि हाथ
1: और
0: होते हैं।
1: चूंकि आप लोगों की भाषा में कहा भी जाता है कि जो शुरू का जो समय है काफी क्रिटिकल, काफी महत्वपूर्ण समय है,
0: हाँ, गोल्डन टाइम,
1: जी,
0: उसी टाइम को हम लोग सबको यूज करना चाहिए बेसिकली।
1: सब आपने ट्रॉमा के विभिन्न पक्षों के बारे में अभी अच्छी जानकारी दी। आगे हम लोग अब समाप्ति के चरण पे पहुंच रहे हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, कई बार कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मेडिकल के में, लेकिन चूंकि ये ट्रॉमा है और यहाँ कई बार लोग रैश ड्राइविंग, अनियंत्रित ड्राइविंग, अपने सड़क पे या कार्यस्थल पे सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करना, विभिन्न मापदंडों का सरेआम उल्लंघन करना, इन सब चलते भी दुर्घटनाओं को दावत देते हैं। तो आखिर ऐसे क्या कुछ उपाय हैं जो लोग करें तो ट्रॉमा केसेज में कमी आए और ट्रॉमा की स्थिति ही नहीं हो, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले बात है कि हर आदमी जो भी ड्राइव करते हैं, वो बाइक हो या कार हो, किसी तरह का मोपेड हो, हर को सावधानी पूरी तरह से बरतना चाहिए। अपने लिए पहले को हेलमेट वगैरह जरूर पहनना चाहिए जो बाइक्स
1: जी
0: एंड टू
1: जी
0: व्हीलर्स चलाते हैं, और जो 4-व्हीलर जरूर अपना सीट बेल्ट को बांधे,
1: जी,
0: और किसी तरह का मादक द्रव्य को सेवन करके गाड़ी को
1: ये भी आपने बहुत
0: नहीं
1: अच्छी बात बताई
0: नहीं
1: कि
0: नहीं चलाना
1: नशे की
0: चाहिए,
1: हालत में
0: नशे की
1: वाहन नहीं
0: हालत
1: चला।
0: में बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और पूरी तरह से ध्यान दे के गाड़ी चलाना चाहिए, और सीट बेल्ट, और किसी तरह का नेग्लिजेंसी नहीं करना चाहिए, मोबाइल का यूज़ प्लीज़ नहीं करें गाड़ी चलाते समय,
1: जी,
0: इस तरफ का जरूर ध्यान रखा जाए। रजिस्ट्री
1: और जो वाहन सीमा की गति की जो सीमा है
0: गति की
1: उसको
0: सीमा
1: भी,
0: को भी एकदम जरूर ध्यान देना चाहिए, गति सीमा को अपने लिमिट्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, 40 की से 60 के स्पीड में आप हरदम गाड़ी को चलाने की कोशिश
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने काफी सावधानी के बारे में बताई, लेकिन इसके

0: बावजूद भी जैसा हम लोगों ने आरंभ किया था तो ये बात सामने आई थी कि अगर उसके बावजूद भी दुर्घटना हो जाती है, ट्रॉमा की स्थिति आ जाती है, तो जो कई बार जो गुड समेरिटन्स की भी हमने बात की, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यूं ही सड़क में दुर्घटना देख के आगे बढ़ जाते हैं, संवेदन शून्य होकर, संवेदनहीन होकर। लेकिन इस समय सही स्थिति क्या है? जो लोग वहां पे मौजूद हैं उन्हें एक्टिव होना चाहिए, और उन्हें किस तरह का जो है ध्यान रखना चाहिए?
1: राजेश जी, हर आदमी के अंदर कुछ अच्छाई होता है।
0: जी
1: वो
0: जी
1: आदमी, अगर कोई भी आदमी वहाँ मौजूद है, जो भी वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं,
0: गुजर
1: जो भी
0: रहा है।
1: हैं,
0: जी
1: गुजर रहे हैं, उनको जरूर खड़ा होकर उस बंदा को मदद जरूर करना चाहिए। बंदा को, उस आदमी को मदद जरूर करना चाहिए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने आप में, जब आप किसी का जान बचा सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: कोई
0: बिल्कुल,
1: भी
0: एक
1: सामान्य से
0: ईश्वरीय
1: सामान्य
0: सहायता की तरह।
1: ईश्वरीय सहायता की तरह आप उसको जान बचा सकते हैं। सिंपल चीज़ है कि आपको जो भी, जैसे हम पहले
0: जी
1: बताए
0: जी कि
1: कि
0: उसको
1: सही से लेटाया जाए उसको, उसका एयरवे को खोल दिया जाए। मुंह वगैरह अगर कचरा भरा हुआ है तो आप ये कर सकते हैं कि उसका सांस चले। इससे भी अगर अच्छा, आप देखते हैं विदेशों में, आप लोग टीवी में भी देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपका दिल का धड़कन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा CPR भी दे सकते हैं। एक कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन बोलते हैं।
0: जी, और अगर हड्डी वगैरह का चोट
1: हड्डी
0: महसूस हो रहा हो
1: हड्डी
0: तो
1: वगैरह का चोट अगर महसूस हो रहा है, जो हड्डी उड्डी टूटा है, तो आप उसको स्प्लिंटेज भी कर सकते हैं। कहीं से बाहर से खून का रिसाव हो रहा है तो उसी का कपड़ा फाड़ के आप वहाँ पर बांध सकते हैं।
0: जी।
1: इस तरह के चीज़ों पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता। और उसके
0: बिना
1: बाद
0: देरी किए हुए
1: बिना
0: एम्बुलेंस।
1: देरी देरी किए हुए आप तुरंत एम्बुलेंस को बुला के, और भी जो आदमी रहते हैं उनके मदद से आप एम्बुलेंस में शिफ्ट करके उसको कोई भी नज़दीकी हॉस्पिटल में आप जल्दी भेज
0: जी,
1: सकते
0: मतलब
1: हैं।
0: एक बार अगर वो किसी चिकित्सालय में पहुंच गया, अगर वो
1: हाँ,
0: दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ट्रॉमा पर्सन, तो फिर
1: बिल्कुल,
0: उसको विशेषज्ञ सलाह के लिए तो आगे
1: विशेषज्ञ
0: भेजा ही जा
1: सलाहकार
0: सकता है।
1: इन्वेस्टिगेशन सबके लिए आगे ये किया जा
0: तो
1: सकता
0: डॉक्टर
1: है।
0: साहब, आपने ट्रॉमा प्रबंधन, ट्रॉमा के बारे में, जो शारीरिक चोट है, दुर्घटनाग्रस्त खास जो पक्ष है, उसके बारे में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद राजेश जी।
2: ट्रामा मैनेजमेंट, एक जानकारी। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर असीम चौधरी और उनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार राय। श्रोताओं, पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना भारत सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू की गई एक परिणाम आधारित योजना है। श्रोता साथी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को 12 से 15% तक कम करना है। बिजली और औसत लागत और औसत राजस्व के बीच के अंतर को शून्य करना है। उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बिजली सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें श्रोता साथी, तो ग्रिड की दक्षता सुधारने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लगाना प्राथमिकता है। बिजली की तारों, ट्रांसफार्मर आदि को उन्नत करना, किसानों को विश्वसनीय बिजली देने के लिए कृषि फीडरों को अलग करना। इस योजना की विशेषता ये है कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग आधार पर डिजाइन की जाएगी, यानी कि वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होगी। श्रोताओं, मीटरिंग इकोसिस्टम विकसित करना इस योजना का सबसे प्रमुख घटक है। इस योजना के माध्यम से बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को सहायता

आशा भोसले की आवाज़ में ये था अंगूर फिल्म का गीत। गीत गुलजार का था और संगीत था आरडी वर्मन का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अनुमति रश्मि तिवारी को।

0: श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कल कारखाने। प्रसारण हो रहा था FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार बुलेटिन सुनिएगा, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का

0: लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं जय नंदन तिवारी और साथियों के

झारखंड के लोकगीत, यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान

0: एकदशांशोत्तर शून्य पंच लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः त्रयोविंशति जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य राजस्थाने एकदशांशोत्तर शून्य पञ्चलक्षकोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
1: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं पञ्चविंशतिः षड्विंशति देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् चत्वारिंशत् देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 3000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूरक्षेत्राणां च कृते वैमानिक सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु च नियुक्तानां 45,000 युवकानां कृते नियुक्ति पत्राणि अपि प्रधानमन्त्रिणा वितरितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। एते सर्वे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा इत्यादिभिः आतंकवादी संघटनैः सह सम्बद्धाः आसन्। मन्त्रालयेन निगदितं यत् देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायै सर्वकारः प्रत्येकं आतंकवादी संजालं विनष्टुं कृतसंकल्पः वर्तते। अद्य उद्घोषितेषु त्रयोविंशति आतंकवादिषु 17 पाकिस्तान देशस्य नागरिकाः 6 च भारतीय नागरिकाः सन्ति।

0: संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 92.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं।
1: पिघलती फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान।

0: हिंदुस्तान तकनीक के ऊंचे शिखरों पर, जहां मुस्कुराता है विज्ञान जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर से सुनिए कृषक श्रोताओं का कार्यक्रम कृषि जगत।

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुनी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूं मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी। कृषक मित्रों, आज के अंक में वन महोत्सव क्या है, क्यों जरूरी है और वनों के संरक्षण में इसकी उपयोगिता क्या है, विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे पोड़ाहाट जिला चाईबासा के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री नीतीश कुमार जी। सुनिएगा कुछ गीत, जरूरी सूचनाएं और जानकारियां, लेकिन इन सब से पहले बातें कर लेते हैं वन महोत्सव के बारे में।

कृषक मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से वन महोत्सव की शुरुआत हो जाती है, और हाँ, आपने यह भी गौर किया होगा कि पहले बारिश टाइम पर आती थी, समय पर आती थी, अब क्यों नहीं आती? क्योंकि पेड़ कम हो गए हैं। सच ये है कि खेती और पेड़ एक दूसरे के पूरक हैं। एक पेड़ 10 एसी के ठंड देने के बराबर काम करता है। एक पेड़ एक साल में 20 किलो तक धूल साफ कर सकता है। एक पेड़ बाढ़ का पानी सोख कर खेत बचाता है। तो किसान भाई बहनों, इस साल आप यह संकल्प लें कि अपने खेत की मेड़ पर 10 पेड़ नीम, आम, शीशम के लगाएंगे। ऐसा करने में सरकार भी आपकी मदद कर रही है। कृषि वानिकी योजना में 75% सब्सिडी भी दे रही है। मित्रों, याद रखें, पेड़ नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो खेती नहीं। आइए आज एक पौधा कम से कम जरूर लगाने का हम संकल्प लें। कृषक मित्रों, जुलाई के इन दिनों में धान रोपनी चल रही है। रोपनी के साथ एक काम और कर लें कि खेत के जो कोने हैं उनमें 5 फलदार पेड़ लगा लें और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प भी ले लें। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला क्यों? तो इसका जवाब है कि इसके अनगिनत फायदे हैं। पहला फायदा है कि 3 साल बाद आम अमरूद से साल का 20,000 से 30,000 रुपया आपको आमदनी के रूप में आने लगेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। दूसरा फायदा है कि पेड़ की छाया से खेत की नमी बची रहती है, पानी का खर्च कम आएगा। तीसरा फायदा है कि पक्षी आएंगे, कीड़े खाएंगे, कीटनाशक का खर्च जो है वो बचेगा। तो कौन से पेड़ लगाने से फायदा होगा, यही सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि लीची, अमरूद, कटहल, आंवला झारखंड की मिट्टी के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए इसे ही लगाएं। वन विभाग से मुफ्त में पौधा भी मिल जाता है। अपने प्रखंड के कृषि समन्वयक से मिलकर इस संदर्भ में जानकारी हासिल कर सकते हैं। धान भी, फल भी, यही है समझदार भरी खेती। मित्रों, यह थी जानकारी वन महोत्सव के बारे में तथा पेड़ लगाने के फायदों के बारे में। और

आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है वन महोत्सव क्या है, क्यों जरूरी है और वनों के संरक्षण में इसकी उपयोगिता क्या है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साथ हैं पोड़ाहाट जिला चाईबासा के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री नितिश कुमार जी, और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंट वार्ता।

0: किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बातें करेंगे वन महोत्सव के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हम प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाते हैं। तो इसके मनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्यों मनाया जाता है इसे, इन सभी बातों पर बात करने के लिए आज ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो पोड़ाहाट के DFO हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला इनके साथ शुरू करते हैं। नीतीश जी, आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नीतीश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे वन महोत्सव को लेकर?
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जोहर। और आज हम इस वार्तालाप में मैं आपको बताऊंगा कि जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो हम वन महोत्सव मना रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है और उसके पीछे हमारा इतिहास क्या है, उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मॉनसून पे पूरी कृषि डिपेंडेंट है, तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी इनसे वंचित नहीं है। प्रायः जो अपने क्षेत्र में मॉनसून का प्रवेश जून के मिड में हो जाता है, तो मॉनसून आने के बाद मिट्टी का जो कंडीशन होता है वो अनुकूल हो जाता है पानी और ऊष्मा के लिए, और जो पौधा रोपण का कार्य तब हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे अनुकूल समय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो कि अभी चल रहा है, उसको हम लोग मानते हैं। और इसीलिए हम लोग पौधा रोपण जो नन्हे पौधों को इसी समय लगाते हैं, ताकि उनका जो जड़ अच्छे से पकड़ ले और उनको अनुकूल वातावरण मिले अपने आप को बढ़ने के लिए।
0: अच्छा, और ये जो मॉनसून का जो समय होता है वो पेड़ के लगाने के लिए ही होता है, और एक तरह से देखा जाए तो चूंकि हमारा जो वन है वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। इसलिए भी यह दिवस मनाने का मूल उद्देश्य भी मुझे लगता है कि शायद यही हो।
1: जी, जो हमारी संस्कृति है वो हमेशा वनों को सुरक्षित रखने की है।
0: अच्छा।
1: हम लोग देखेंगे कि हमारा चिपको मूवमेंट हुआ था और हमारे जो फ्रीडम फाइटर सबने ये मैसेज दिया कि हरा भरा जो पृथ्वी है वही हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य का सार है। तो उसको बचाने के लिए हम पेड़ों की बहुत जरूरत है। हमारे जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें भी 33% जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है उस क्षेत्र को हरे वृक्षों से आच्छादित और मतलब हरा भरा रखने का लिखा मतलब कंडीशन मिला हुआ है हम लोगों को। तो उसको भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अपने जो संस्कृति को ये ऐसा बढ़ावा देने के लिए लोग ये लगाते हैं पेड़।
0: और ये जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम लोग जो वन महोत्सव मनाते हैं वो किसी न किसी थीम पर आधारित होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के अनुकूल, हम महोत्सव को मनाने के अनुकूल हम लोग निर्धारित करते हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम से संबोधन किया था वन महोत्सव के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
1: ये बहुत एक अच्छी बात है कि हम लोग पेड़ों को लगाने के बाद से जुड़ाव है उनको करने के लिए, पेड़ों को अपने गार्जियन अपने फैमिली का पार्ट मानने के लिए ये हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये डायरेक्शन मिला था कि हर एक जगह जहाँ भी वृक्ष लग रहे हैं उनको एक अपने माँ के नाम, अपने परिवार के नाम, अपने रिलेटिव के लिए उसको हम अटैच हो जाए उससे, तो उससे हमारा जुड़ाव रहेगा, हम उसको देखेंगे, हम उसका संरक्षण करेंगे। इससे हमारे सक्सेस, जो पेड़ लगाने के बाद सक्सेस रेट होता है जो जिंदा होने का, उनको बढ़ने का, वो बढ़ जाएगा। और इसके लिए हम लोग फोटोग्राफी, हम लोग टाइम पे उसका प्लांटेशन करते हैं। और ये टारगेट के अलावा भी हमारे स्टेट्स ने भी, हर एक अलग अलग स्टेट्स ने भी टारगेट रखे हैं कि पेड़ों को और लगाए और इससे अपना ग्रीनरी हम लोग बढ़ाएं।
0: अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप फील्ड में उतरते हैं तो पेड़ जब लगाते हैं या फिर वनों की जब सुरक्षा करते हैं।

0: चाहिए, पानी चाहिए उष्मा, तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे सॉयल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि कंटूर ट्रेंच, जिसमें वो पानी रहे और वो पानी से वो पौधों को मजबूती मिले और वो ग्रो करें। तीसरा, जब ठंडी का मौसम आता है दिसंबर जनवरी फरवरी, उस समय नमी कम हो जाती है, सूखापन बढ़ जाता है, तो उसमें जो जंगल में कोई भी अगर आग की चिंगारी हुई तो जो पत्ता गिरता है उससे आग फैलता है, तो वो आग भी जो नन्हे पौधे हैं उनको खतरा बनाती है। तो मुख्यतः यही चुनौतियां हैं जो
1: हाँ
0: हम
1: जी।
0: अभी देख रहे हैं।
1: और वन महोत्सव के दौरान जो है हम लोग पेड़ तो लगाते ही हैं, और कौन कौन से अभियान की और नई शुरुआत करते हैं आप लोग?
0: हम लोग अभियान में वन महोत्सव में पेड़ों को लगाने के पहले हम लोग एक बार वृक्ष पूजा करवाते हैं सुथल का, जो वहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं खासकर महिलाएं सहयोग लेके हम पूजा करते हैं उस स्थल का, ताकि उसको एक तरह का मान्यता मिले, उसको एक कार्य के रूप में नहीं बल्कि एक लगाव, एक मूवमेंट के रूप में देखा जाए उस एरिया को और उसको संरक्षण किया जाए। अभी जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं कि पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरा विश्व इसमें जागरूक हो रहा है। आईपीएल में हमने देखा था कि हर एक डॉट बॉल पे पेड़ लगाने का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। जितने भी कैंपसेस हैं यहाँ पे, स्कूल के कैंपसेस, सीआरपीएफ, पुलिस के कैंपसेस, वहाँ पे वृक्ष लगाते हैं ताकि बाउंड्री के अंदर उनका प्रोटेक्शन अच्छे से हो जाए। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का एक नया कंसेप्ट है, चाहे शहरी क्षेत्र में तो पहले से पेड़ लग रहे हैं, वो उनका नेचुरल भी रीजनरेशन होता है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में वो एरियाज हैं जहाँ रोड के बगल में, आपके पार्क में, जो अर्बन स्पेस है जिनमें ग्रीन लंग्स हैं जो स्वच्छ हवा दें, तो वो सब चीजों में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपको, आप भी जानते ही हैं कि जो वन महोत्सव की जो शुरुआत है वो वर्ष 1950 में हुई थी, और उस समय के जो तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री थे डॉक्टर के एम मुंशी, उनके द्वारा ये वन महोत्सव की शुरुआत हुई की गई थी। और उनका मानना था कि चूंकि पेड़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन के बहुत बड़े अंग माने जाते हैं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर हम नहीं होंगे। तो क्या कुछ
0: बिल्कुल
1: कहना चाहेंगे कि एक पेड़ एक जीवन है कि नहीं?
0: जी, बिल्कुल मैं इससे सहमति रखता हूँ। हमारे संस्कृत का एक बहुत फेमस श्लोक है जिसका मैं अंग्रेजी और हिंदी में आपको अनुवाद कर देता हूँ। वो बोलता है कि एक जो तालाब है वो 10 कुओं के बराबर होता है, और 10 कुओं से एक रिजर्वायर बनता है, 10 रिजर्वायर के बराबर एक पुत्र होता है, और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है।
1: अरे वाह।
0: तो ये हमारी संस्कृति है, और हमें ये भी सिखाया गया है कि हम लोग हमेशा अपने अगले भविष्य के बारे में करें। पर पूर्वजों द्वारा लगाया गया पेड़ का फल उनके वंशज, उनके नाती पोता बच्चे लोग एंजॉय करते हैं, तो हम लोग के द्वारा जो लगाया हुआ फल है, जो पेड़ है, उसका फल अगली पीढ़ी एंजॉय करेगी। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट हमारे जो फर्स्ट वन महोत्सव में डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने दिया था, और ये उनका आइडिया था कि इस टाइम को यूज करके एक ड्राइव की जगह एक मूवमेंट करने, क्रांति लेते आए, ताकि पेड़ों को लगा के इतना हरा भरा कर दें जिससे कि हम लोगों को चारा, हम लोगों को वन उपज, जो पेड़ों के फल फूल का जो न्यूट्रिएंट्स और जो उनसे लाभ मिलता है वो भी मिले, और इसको बढ़ावा मिले ताकि कृषि को एक तरह का ये सपोर्ट करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और अभी का जो वर्तमान परिदृश्य जब मैं देखता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो पाता हूँ कि जो हमारे वन की जो भूमि थी वो कहीं ना कहीं कृषि योग्य भूमि के रूप में डेवलप हो गई। जब आप ये चीज को देखते हैं कि वनों का वन कटाई हो जाता है और हमारे जो खेत पूरे साफ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशंस हैं वो पैदा होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो सिचुएशन है आने वाले समय के लिए कितना खतरनाक हो सकता है?
0: वनों पे जो प्रेशर है जिसके चलते डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, एग्रीकल्चर का, तो उन सब में हम लोगों को एक संतुलन बैलेंस देखना होगा। कृषि भी बहुत जरूरी है, बिना अनाज के हमारा देश सक्सेसफुल कैसे होगा? हमारे जो कृषि, हमारा इंडिया इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हम लोग के
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जो मोर देन 40% से ज्यादा लोग कृषि में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो उसको भी हमें बढ़ावा देना है कि कृषि से हमारा फूड सिक्योरिटी रहे, और हमें क्लाइमेट को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, एल नीनो का असर

0: जो आजकल सब जगह पेपरों में आ रहा है, एक तरीके का असर है जो कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा।
1: बिल्कुल
0: अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पेड़ों के जो जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी का जो कटाव है वो बढ़ जाएगा, हवा का प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो ये सब चुनौतियां जो है वो हम लोगों को उसको पहले से जान लेना है, और इसी संकल्प से भारत ने ना कि देश के लेवल पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जिसमें हम लोगों का सबसे बड़ा तो पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोला कि कार्बन सिंक हम लोग बनाएंगे, एनडीसी हमने वहां पे कमिट किया। दूसरा, हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पहले से 33% एरिया जो हमको ग्रीन कवर में रखना है उसके लिए भी किया। तीसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों को ऐसा हो कि मतलब एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिले, फॉरेस्ट्री पॉपुलर की स्पीसीज इसमें हम लोग देखते हैं और भी सारे हॉर्टिकल्चर वगैरह को देखते, ताकि दोनों संतुलन में चल सके, फॉरेस्ट्री भी हो और एग्रीकल्चर। तो ये सब मुख्य कुछ एरियाज है जिसमें हमने काम किया है, और इसमें अभी ग्रीन क्रेडिट का आइडिया और इसमें ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट के आइडियाज, नए नए आइडियाज ऐड हो रहे हैं जिससे हम लोग इसका बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरा है जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में जो फॉरेस्ट का डाइवर्जन होता है, उसमें हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया जो है वो नॉन फॉरेस्ट का हम लोग फॉरेस्ट को लेके फॉरेस्ट का, ताकि एरिया बराबर है, वो हम लोग पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं।
1: नीतीश जी, अभी आपको पूरी दुनिया सुन रही है, जनता के नाम क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश छोटा सा रहेगा, हम लोग जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, वो परिवर्तन का जो दौर है वो रियल है और उसमें पूरी दुनिया में उसका असर होगा। तो हमारे भविष्य को इसके असर से बचाने के लिए हम लोगों को पेड़ों का महत्व स्कूल के बच्चों से लेकर पूर्वज जो हमारे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं दोनों तक ये मैसेज सब में सेम जाना चाहिए कि पेड़ हमें, ठीक है, पेड़ को लगाना, उनको बचाना और उनके फलों को हमें अपने भविष्य को देना, ये है मेरा पहला मैसेज रहेगा। दूसरा है कि पेड़ एक उससे हमें एक जुड़ाव पैदा करना, ताकि वो पेड़ का जड़ पानी बचाता है, सॉयल इरोजन को बचाता है, पेड़ के ऑक्सीजन से हम लोगों को शुद्ध हवा मिलती है। तो पेड़ का महत्व अनगिनत है, देखने में अच्छा लगता है, पार्कों का सुंदरता बढ़ाता है, ठंडा पैदा करता है, हमें फल देता है, जानवरों को चारा देता है, तो अनगिनत फायदे हैं। और इन फायदों को देख के हमें कोशिश करना है कि जितना से जितना हम इसका मतलब गलत कटाव रोकना है और जितना से जितना हो सके इनको ज्यादा लगाना है। तो यही मेरा छोटा सा मैसेज रहेगा।
1: तो किसान भाई बहनों, ये थे नीतीश कुमार जी, जो कि पोड़ा हाट के DFO थे, और हम इनसे टेलीफोन लाइन पर बातचीत कर रहे थे, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि वन महोत्सव क्या है, क्यों मनाते हैं, मॉनसून की शुरुआत में क्यों इसको जुलाई के महीने में मनाया गया, इसलिए सारी बातों को साझा कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि हमें वन महोत्सव के समय में क्या कुछ करना चाहिए, एक पेड़ कितने पुत्रों के बराबर होता है, इन सब सारी बातों को वो साझा कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा वन महोत्सव जो हम लोग मनाते हैं उसके पीछे का मकसद बस यही है कि हमारा प्रकृति, हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हम उसको जब ये सत्ता सौंप कर जाए तो अच्छा वातावरण देकर जाए। नीतीश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में टेलीफोन लाइन से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

किसान भाई बहनों, अभी आप वन महोत्सव क्या है, क्यों जरूरी है और वनों के संरक्षण में इसकी उपयोगिता क्या है विषय पर पोड़ाहाट जिला चाईबासा के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री नीतीश कुमार जी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। बाएं ध्वनि अंकन पर आधारित थी यह भेंटवार्ता। किसान भाई बहनों, एक नजर डाल लेते हैं फसल सलाह पर। धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेक्टर की दर से डालें तथा नील हरित शैवाल एक पैकेट एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहाँ पानी खड़ा रहता हो। किसान भाई बहनों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं चलने को, तो इस कार्यक्रम की प्रस्तुति से अब अनिमेश को दीजिए अनुमति। आप रखिए आप सभी अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

कृषक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर शाम के 6:55।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनिषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूमरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी

0: अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनमोन मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सांडदा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ रहा है।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीफ पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर की बेटी तनिषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। भारत की पहली मेड इन इंडिया कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर इस संवाद का आयोजन किया गया। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा ने ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों से भी अपने तथा परिवार के सदस्यों का इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरवाने का आग्रह किया। रांची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा किया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज जमशेदपुर के आदित्यपुर में दिवंगत हिमांशु सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान श्री साहू ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है।
2: जिस प्रकार से जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमारे दो दो जुआ नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। एक जुआ की मौत हो गई, एक जुआ जीवन और मौत से जूझ रहा है और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है। इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन करते हुए इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रेरणादायी केंद्र बताया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 17-18 वर्षों से

0: संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों को अंतरिम राहत देते हुए अंतिम निर्णय तक उन्हें सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सेवा नियमितीकरण से जुड़ी याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि अर्जिमोन मिले सरसों तेल के सेवन से परिवार के सदस्यों को ड्रॉप्सी रोग हो गया था, जिससे शरीर में सूजन फैलने के बाद उनकी मौत हो गई। धनबाद के निरसा से विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वसेपुर क्षेत्र में प्रिंस खान से जुड़े एक ठिकाने पर आज बुलडोजर चलाया गया। धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि कुड़की जब्ती के आदेश को लेकर कार्रवाई की गई है।
1: पूरी तरह से लगभग खंडर हो चुका था, इसका पार्ट पूरा सब गिर रहा था। यहाँ पे बच्चे खेलते थे, एक दो बच्चों को यहाँ पे चोटें भी आई और संभवतः इसका नक्शा वगैरह भी पास नहीं था, तो इन सभी के मद्देनजर कुर्की भी की गई। जो पार्ट्स गिर रहे थे, जो खंडर हो चुका था जिसके कारण जनमानस को दिक्कत हो रही थी, उसे अभी तोड़ा जा रहा है और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा।
0: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी।
2: कस्टोडियन के कैपेसिटी में हमको देखना है किस तरह से हम हेड वाइज इसको खर्च करें, जिसे इंस्टीट्यूशनल ग्रुप पब्लिक ट्रस्ट बना रहे पर्पस है। अगर फाइनेंशियल में मिसमैनेजमेंट हो गया तो ट्रस्ट एलिमेंट है जो इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ डेवलप नहीं करेगा। उसी के लिए जितना भी रिपोर्ट होता है पीएससी में जाता है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं डिस्कशन करते हैं, यही फोकस है कि हम लोग उसी ट्रस्ट को बनाने के लिए गैदरिंग है उसको।
0: राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल आयोजन को लेकर आज देवघर में झारखंड और बिहार के अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। संथाल परगना आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ पर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की समीक्षा की गई। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने बताया कि मेले के दौरान वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी।
3: सभी बिंदुओं पे आज बहुत ही वृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग एस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं ये कितने हैं, कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स आपस में शेयर करें ताकि हम लोग आगामी श्रावणी मेला उसका संपादन हो बहुत बढ़िया से।
0: रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कल मोराहबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के वुशु हॉल में होगा, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और प्रशिक्षण केंद्रों के जूनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के चयन का अवसर मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन, कहा डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनीषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में अर्जिमोन मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉप्सी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों दुमका, जामर, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा में SIR यानी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान मतदाता सूची को दुरुस्त करने और उसके शत प्रतिशत सत्यापन के लिए चलाया जा रहा है। BLO और BLO पर्यवेक्षक घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची से जोड़ना और अयोग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाना है। BLO चांदनी बीबी कहती हैं कि
2: मैं घर घर जाके गन्ना पत्र बांट रहा हूँ और जो सही पाया जा रहा है उनका मोबाइल में नाम कर रहा।
1: सरकारी शिक्षिका गायत्री रॉय वॉलंटियर के रूप में SIR अभियान को पूरा करने में जुटी हुई हैं। वह बताती हैं कि
3: मेरा प्रमुख काम है BLO और मतदाता को SIR से संबंधित सभी तरह का सहयोग प्रदान करना। ये सरकार की तरफ से एक पहल है जिसमें कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी फर्जी मतदाता मतदाता सूची में नहीं है।
1: मतदाता टीम के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गणना प्रपत्र में जरूरी जानकारी भरकर हस्ताक्षर कर BLO को लौटा रहे हैं। दुमका में संताल हूल दिवस शौर्य और गौरव भाव के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। दुमका की पोखरा चौक स्थित अमर शहीद सीधो कानू एवं वीरांगना फूलो झानू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुमका के विधायक और झामुमो नेता बसंत सोरेन, पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन, उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि
4: दिन को लोग जरूर बनाए और उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उन चीजों को याद करते हुए उन्हें अनुसरण करते हुए अपने जीवन को एक प्रेरणा के तौर पर जीवन में लाने का प्रयास हुए।
1: भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इस अवसर पर कहा कि
5: हम लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आज की सरकार की जो गलत नीतियों का जो परचम लहरा रही है और अवैध खनन पूरे जोर शोर से चल रही है और यहाँ के जनता भूखे मर रहे हैं वो हम लोग देखने पा रहे हैं।
1: दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट से एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी जिसमें दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि
6: डिस्ट्रिक्ट जज साहब को बाई पोस्ट लेटर दिया गया जिसमें कि बोला गया कि हम लोग कोर्ट में हमला करेंगे। इसमें मुख्य बात है स्पीड पोस्ट में चिट्ठी लिखे थे वो अपने आधार कार्ड भी मेंशन किया है, अपना डिटेल एड्रेस भी दिए थे तो उसका छानबीन किया गया। उसके वर्तमान का वो निवासी है जो आधार कार्ड है उन लोगों ने बताया कि हम लोग कभी ऐसा चिट्ठी नहीं लिखा है, लगता है कोई दुर्भावना से हम लोग से किसी का विवाद होगा इसलिए हम लोग का नाम दे दिया और आधार कार्ड मेरा डाल के जज साहब के यहाँ कोई स्पीड पोस्ट कर दिया है।
1: बासुकीनाथ श्रावणी मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। इस माह के अंत में मेले की शुरुआत होनी है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन और जिले में आजकल प्रसारित हो रहा था आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हुए हैं। हमारे केंद्र से लीजिए सुनिए बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम।

0: भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
1: जहाँ लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहाँ की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संताली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है। जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
3: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर।
4: इस समय रात के 7:45 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में सुनिएगा।

आकाशवाणी जमशेदपुर से अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था। हमारा ये प्रसारण आप FM 102.4 MHz पर सुन रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

प्रकाश मेहरा का लिखा ये किताब सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। इस गाने की धुन बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी।

गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, श्रेया घोषाल का गाया हुआ है। गीत रचना प्रवीण भारद्वाज और अनवर सागर की थी, संगीत तैयार किया था डब्बू मलिक ने।

0: एक दूजे के लिए। इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ। आनंद बख्शी थे गीतकार, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुने कुछ संदेश।
1: पिघलती फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नव निर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

आनंद बख्शी के शब्दों को सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था इसे लता मंगेशकर और साथियों ने फिल्म हीरो के लिए।

0: जिस्म फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे गाया था श्रेया घोषाल, शान और साथियों ने। नीलेश मिश्रा थे शब्दकार, संगीतकार M.M. क्रीम। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम सुनिएगा। इसमें पहले हिंदी समाचार बुलेटिन होगा 8:45 पर, समाचार संध्या। रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार बुलेटिन News@9। करंट इवेंट्स का प्रोग्राम स्पॉटलाइट रात 9:15 पर। 9:30 पर साहित्य भारती, सुनिएगा ये राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका। और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन होगा रात 10 बजे से। आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रीय प्रसारण सुनिएगा बस कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ, हमारी प्रसारण सेवा के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के

0: मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000

0: हजार करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर

0: करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CGSEMI OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem,

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया।

0: ठहराव में सुनते हैं रूपक मेघ मन और मालवा।
1: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
2: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
1: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
2: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
1: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
3: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
2: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
3: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
2: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
1: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
2: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
3: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मल्लिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
0: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं।

0: कार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
1: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
0: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
1: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं, पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम और सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को, यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है।

0: रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले, तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजे

0: अवस्थी।
1: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
2: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
1: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे शहीद थे उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग वो रंग, उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की

0: उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खान जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: Aaj raat Pandit Arnob Chattopadhyay ke saath sangat karenge तबले पर इमोन शौरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह।
1: टुनाइट पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय इज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल शाह।
0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय बिगिन्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

Da ni ni da ba ma da ni da ni da ba ma da ni.

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विथ राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: खयाल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द खयाल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो

0: के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. The monsoon session of the parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of parliament from 20th.